0: उस डर के साथ हम बस में सफ़र करते हैं और मेट्रो में सफ़र करते हैं।
1: मतलब मैं हिमाचल से हूँ, मतलब जो कंडक्टर है वो बहुत ही गंदे तरीके से सबसे बात कर रहा था। कुछ भी मतलब अच्छे से बात कर सकता था, बट इधर ये दो वो दो, मतलब कुछ भी अजीब वो गरीब बातें कर रहा था।
2: ऑल ऑफ दिस इज अ लॉट नॉर्मलाइज एंड इट्स नॉट नॉर्मल लाइक फॉर एनी गर्ल दैट वी आर वॉकिंग अ मैन इज स्टेयरिंग दैट इज अ क्राइम यू नो ईव टीजिंग स्टॉकिंग इवन the kind of cyber crimes that are happening all over the university and men just don't know that it is criminal in nature let alone it's indecent and our university all the authorities have been complicit in that.
3: For a young woman in Delhi, a normal journey can come with an extra checklist. Be alert, watch your surroundings, tell someone where you are. And then there is the question of institutional response. These visuals recorded during the Dusu election period show a woman alleging that obscene remarks were directed at protesting students. And then the perpetrator was hugged by a cop.
4: गंदे गंदे इशारे करके महिला विरोधी गालियां भी दी उन्होंने और मुझे, मैंने बोला ये क्या कर रहे हो, पर्चा क्यों फाड़ रहे हो, हमारा पोस्टर क्यों फाड़ रहे हो, तो मुझे बोल रहे हैं चुप रह, ज्यादा मत बोल, मतलब गाली भी दिया उन्होंने बदतमीजी करते हुए और वहां जाके गंदे गंदे इशारे
5: वो इशारे आपकी तरफ
4: के हमारी तरफ मेरी तरफ ही इशारे किए थे, हम चार पांच लड़के एक साथ ही खड़े थे, पर्चा फाड़ के वहां जाके इशारे हमारे तरफ किए, फिर पुलिस वालों से हेलो किया है, पुलिस वाले भी इनके साथ है। मेरा ये सवाल है कि कानून किसके लिए, सामने पुलिस वालों ने देखा उसको इशारे करते हुए, क्यों नहीं उसी टाइम पकड़ा पुलिस वालों ने।
3: For these students, the problem is not just the crime, but what follows. Jokes, excuses, victim blaming, and questions. And the scale of the problem goes far beyond these incidents. According to NCRB's 2024 data, 4.41 lakh crimes against women were registered across India. These includes 29,536 registered rape cases. Delhi alone recorded 13,396 crimes against women, including 1,058 rape cases. Crime figures capture only what gets reported, not the woman who changes her route or calls home while walking. Students say the fix is basic. Better lighting, more patrolling, working CCTV, and safer routes.
6: I'm from UP, and मैं ये कहना चाहती हूँ कि girls की safety के लिए कुछ करना चाहिए. Like कुछ भी, मतलब कि police वगैरह को ज़्यादा secure रहना चाहिए girls की safety के लिए.
7: आप लोग जब रात में कैंपस से जाते हो, ये यहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग होती है?
6: लोग ना बवाना से हैं, तो वहाँ पे ना रात में रिठाला के बाद बस करनी पड़ती है हमें वहाँ पहुँचने के लिए, तो वहाँ पे बसेस बहुत कम मिलती है और वहाँ पे बहुत ही इलाका, बहुत आउटर एरिया है, मतलब बहुत ही गांव का एरिया है।
8: फैसिलिटी होनी चाहिए, कैमरे ज्यादा से ज्यादा लगवाएं,
9: जिससे हम लोगों को एक एक घंटे वेट करना पड़ता है तब जाके बस आते हैं। उसमें भी बस आए हैं, आदिति महाविद्यालय से आए हैं, वो गाँव का एरिया है पूरा, मतलब आउटर एरिया।
3: From Jamui to Delhi, the geography changes, but the fear remains. Women shouldn't have to calculate risk just to move through public spaces.
7: Years and after years, nothing really has changed on the ground, and the Kalkaji incident and the Jamui and several others are a point to prove that women's safety is still a lip service in this country. With video journalist Ajay Kumar, this is Shreya Chatterjee for India Today.
10: In a proud moment for India, the women's kabaddi team has clinched gold at the Asian Games in Japan after defeating Iran in the final. In an exclusive interview with India Today, Captain Pushpa Rana and Pooja Kajla shared their emotions after securing the gold medal for Team India. Let's hear what the champions had to say.
11: जापान में एशियन गेम्स हो रहे हैं और अगर हम एक इवेंट की बात करें या फिर हम एक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन की बात करें जिसका नाम है कबड्डी, उस खेल में भारत का कोई सानी नहीं है। जहां जहां भी भारतीय टीम जाती है वो पोडियम पर सबसे ऊपर खड़ी होती है, यानी कि नंबर वन पोजीशन पर। इस वक्त मेरे साथ कबड्डी टीम की दो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी पुष्पा और पूजा है। पुष्पा टीम की कप्तान है, तो शुरुआत पुष्पा जी से ही करते हैं। पुष्पा जी, इस बार जापान में ये जो टीम है

0: आई थिंक वो इसी सोच के साथ गई थी कि जो हमने 2018 में किया, जो हमने चाइना के हैंगझोउ में किया, वही हमें जापान में भी करना है, यानी कि गोल्ड मेडल से कम कुछ भी नहीं चाहिए।
1: हाँ जी, जैसे आपने बोला कि टीम वैसे ही माइंड सेटअप से उतरी थी और लिटरली हमने इस चीज के लिए बहुत मेहनत करी थी। हम 2-3 महीने से कैंप में ही थे और इस चीज के लिए हमारे कोचिज ने बहुत सपोर्ट किया है, हमारी फेडरेशन ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और हमेशा से कबड्डी पहले से भी बहुत ऊपर रही है और हमारा अभी भी यही प्रयास था कि हम अपना जो मेडल है वो कंटिन्यू रखें।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और पूजा, क्योंकि क्या होता है ना कि रेडर्स का भी रोल बहुत कमाल का होता है, और चूंकि हम ये देखते हैं कि कबड्डी कैसा खेल है जहां पर दिमागी तौर से भी बहुत मजबूत होना है और सेकंड्स में डिसीजन लेना है कि कब किसको कहां पर बस टच करके भागना है। क्या कुछ चलता है जब आप मैट पे उतर जाते हो अपनी टीम को जिताने के लिए? क्या कुछ दिमाग में चल रहा होता है कि नहीं यार, मतलब आज जान लगा देनी है अपनी टीम के लिए?
1: सर, टीम गेम है तो इसमें डिफेंस भी जरूरी और रेडिंग जरूरी है, पर डिफेंस का ऐसा भाई अपोजिट वाली टीम के रेडर को सेफ भी निकाल सकता, पर वहां रेडर को डिसाइड रेड आती है तो डू और डाई तो करना ही पड़ता है। उस टीम में ज्यादातर टीम की वीकनेस, मतलब जहाँ वीकनेस होती है वो ज्यादातर देखा जाता है, उसी जगह पे अटैकिंग वगैरह किया जाता है।
0: अच्छा, क्या हुआ ना, जब सुबह सुबह आप लोगों का मेडल आया तो हमें बड़ी खुशी हुई, इसलिए क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि भारत की ये जो मेडल टेली है उसमें गोल्ड और कब ऐड होगा। ठीक है, शुरुआत की थी विमेन्स टीम ने क्रिकेट में मेडल से, और आज दोबारा जो है हमें, जब तिबारा एक्चुअली मेडल मिला सुबह, तो वो भी हमारी देश की आप जैसी नो विमेन्स एथलीट्स ने हमें दिलाया है कि ये गर्व का पल होता है। शायद आप लोगों को भी इस बात की अनुभूति होती होगी कि हम अपना कंट्रीब्यूशन उसी लेवल पर आकर देंगे जो पूरा देश हमें चाहता है हमसे एक्चुअली।
1: हाँ जी, हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है जब हम इस मोमेंट को एंजॉय कर पाते हैं। लाइक हमने इस चीज के लिए हार्ड वर्क किया है तो हम वो चीज कर पा रहे हैं और अपने देश के लिए जो है मेडल कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो लिटरली ये बहुत प्राउड की बात है हम सबके लिए भी।
0: अच्छा, ये ईरान से ऐसा क्या आप भारतीय टीम का है कि अक्सर हम यही देखते हैं कि हमारे सामने फाइनल में ईरान की टीम पहुंच जाती है और हम उसे हरा भी देते हैं?
1: सर, अभी लास्ट टाइम जो एशियन गेम हुआ था उसमें चाइनीज ताइपाई ने बहुत अच्छा किया
0: बिल्कुल।
1: था, फाइनल में वो आए थे और अभी हमारा जो पुल का मैच है वो भी ईरान के साथ आया था। ईरान हमेशा ही हमारे साथ बहुत फाइट का मैच खेलते हैं लिटरली, बट हम उस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर थे कि हमें प्लानिंग के साथ ही उतरना है और टीम को ऊपर लेके ही चलना है।
0: अच्छा, अभी अभी हमारे जो है मेंस टीम, उन्होंने भी ईरान को ही हराकर गोल्ड मेडल जीता है। तो ये एक प्लानिंग थी कि ये कोइंसिडेंस है कि भाई अगर हराएंगे तो ईरान को ही हरा के दोनों दोनों टीमें वो गोल्ड मेडल लेंगे?
1: वैसे सच बताया बताए तो हमें ईरान को हराने में ज्यादा मजा है,
0: अच्छा कैसे, क्यों ऐसा? चाइनीज ताइपे को भी
1: क्योंकि
0: आपने पिछली
1: लास्ट
0: बार
1: टाइम
0: हराया था।
1: जो कंपटीशन हुआ था तो ईरान के साथ हमारा मैच नहीं हुआ था लास्ट वाले एशियन गेम में, तो अभी वाले एशियन गेम में हमें ऐसा था कि इनके साथ ही मैच जाए और इनको ही हरा के हम जाए। जी
0: अच्छा, शुरुआत कबड्डी की भारत से ही हुई थी, और अब जो है ये देखिए आप एशियन कंट्रीज में भी कितना, भारत के अलावा बाकी कंट्रीज में भी बहुत खेला जा रहा है, तो आपको भी तो बहुत गर्व होता होगा कि यार हम उस स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और उस स्पोर्ट के लिए हम अपना खून पसीना बहा रहे हैं जो जिसकी शुरुआत ही हमने की थी। तो ये भी एक प्राउड मोमेंट होता होगा आप सभी लोगों के लिए।
1: हाँ जी सर, बहुत प्राउड मोमेंट है ये हमारे लिए, हम सब के लिए, क्योंकि पहले जब से देखते आ रहे हैं ना तब से कबड्डी की इतनी वैल्यू भी नहीं थी, प्रो कबड्डी की वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है कबड्डी, और अभी क्रिकेट के बाद मैं बोलूंगी तो कबड्डी बहुत ऐसी हाईलाइट मोमेंट पे है कि हमें लिटरली बहुत अच्छा लगता है।
2: And that's all that we could pack for you in this edition. Thank you so much for watching.
3: You are watching India Today.

0: the chief election commissioner should resign immediately. There are a number of political parties which have demanded the same thing. It's now clear that the chief election commissioner is acting as though he is the sole election commission. He is speaking for the election commission when the record shows that the two fellow election commissioners have disagreed.
1: राहुल गांधी को हर चीज में आपत्ति है, इलेक्शन कमीशन से आपत्ति है, ईवीएम से आपत्ति है, वोटर से आपत्ति है, नरेंद्र मोदी जी से आपत्ति है, एसआईआर से आपत्ति है। मुझे बताइए कि साफ स्वच्छ राजनीति जो अब चाहते हो, साफ स्वच्छ प्रजातंत्र चाहते हो, तो इलेक्टोरल रोल्स को क्लीन अप करने की आवश्यकता है या नहीं? जो बोगस वोटर्स हैं, जो लोग बाहर से आए हैं और वहाँ बैठे हैं वोट कर रहे हैं, उनको निकालने की आवश्यकता है या नहीं? घुसपैठ हैं या नहीं? ये सभी सवालों के ऊपर वो आत्मचिंतन करें तो उनको ये सभी सवालों का जवाब मिलेगा। एसआईआर सिर्फ अपने काम कर रहे हैं।

0: India alliance is very clear. Every single leader of the alliance, every single party is in full agreement that what is going on is absolutely illegal. It is anti-constitutional. I strongly believe that the legal safeguards provided to the election commissioner, which were instituted by this government, by the BJP government, to protect him no matter what he does, those safeguards need to be removed. If anybody is committing illegal acts against this nation, against our constitution, against India, they need to be tried for the criminal actions that they are involved in. This is treason, and he needs to be tried for treason.
1: ऐसे में अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, खासतौर पे सीईसी की है कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें। देखिए, विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता है मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। विपक्ष का काम है राजनीति करना। आप अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे? पर ऐसे में विपक्ष को संतुष्ट कराने के लिए सीईसी को नहीं बल्कि जनता को विश्वास में लेने के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये। ऐसे में अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही लोगों का विश्वास या संदेह खड़ा हो जाएगा तो ये गलत है।

0: between the ISI and the rebels. बता करो इन लोगों का प्लान क्या है?
1: I think we are under attack.
2: Shrikant Tiwari could soon be taking his covert missions beyond the small screen, as The Family Man is reportedly being considered for a theatrical adaptation. While the project remains in its early stages, the idea has reportedly been in the works for some time, with the makers now actively exploring a story that could take the popular franchise into cinemas.
1: But you cannot become wise from others' wisdom.
3: मुझे भी कोट आता है. कभी-कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है. हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. जो जीता वही सिकंदर इसकी.
4: Shrikant.
5: आपका कोड नेम भी है क्या? Like tiger, panther, lion?
6: Intelligence में काम करते हैं बेटा. Circus में नहीं.
7: सर, आपके नाम पे एक अरेस्ट वारंट इशू हुआ है.
8: I'm a suspect.
9: Shrikant Tiwari is now an officially wanted criminal.
2: However, before the film takes shape, the focus remains on season 4, whose basic storyboard is ready. If all goes well, shooting is expected to begin in early
10: 2027.
11: I'm the one that runs the circus. I'm looking for someone जो northeast India को बहुत अच्छे से जानता है.
10: Northeast का बहुत बड़ा drug smuggler.
12: औकात बढ़ानी चाहिए अपनी, लेकिन भूलनी नहीं चाहिए.
2: Created by Raj and DK, The Family Man follows Shrikant Tiwari, a middle-class husband and father who secretly works for an intelligence unit handling national security threats.
6: तो अभी कौन सा सेंचुरी मार रहा है तू?
13: क्या करूं यार, चुपचाप कहीं जाके छुप जाओ और वो सब होने दूं जो वो लोग हमारे साथ करना चाह रहे हैं.
2: Across 3 seasons, the series has built a world of espionage, family dynamics and evolving national security threats.
6: गलत फंस गया यार. साला अभी जाके मेरी डेटिंग का सीन पल भूलने लगा था, सब खत्म. थोड़ी देख ली.
2: With Manoj Vajpayee's Shrikant and Shahrukh Hashmi's J.K. Talpade becoming fan favorites. If the film takes shape, the Manoj Vajpayee starrer could become the latest Indian streaming franchise to make the leap to cinema.
6: एक बार यहाँ से निकल गया ना J.K., मैं तेरा स्वयंवर रचाऊंगा.
14: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली.
9: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो, उसे जीवित नहीं छोड़ सकते. यही गद्दी का नियम है.
2: Following the recent example of Mirzapur, which expanded its universe with Mirzapur the movie.
15: तेरा हीमोग्लोबिन कम है कारे, देख देख, कम खून निकल रहा है.

0: ये इसलिए कर रहे हैं उनके माता जी का जो वो 83 में भारत की नागरिकता ली और 80 में फोर्जरी करके वोट दिया और कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया उनके पिटीशन को, इसको डाइवर्ट करने के लिए ये चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं।
1: हम लोग सब लोग चाहते इस्तीफा होनी चाहिए उनकी और गिरफ्तारी होनी चाहिए, बल्कि ये तो अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो हमने इस पहले भी इस बात को जो है कहा था, राज बिहार भर के हर जिलों में राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन ये अभी बस शुरुआत है। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो लंबी

देश भर में एसआईआर के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हमारे ज्ञानेश गुप्ता, अब वो गुप्ता जी का एक गुप्त मिशन चल रहा है, वो गुप्त मिशन अब गुप्त नहीं रहा, अब वो गुप्त मिशन सार्वजनिक हो गया, सबके सामने आ गया। उन्होंने, उनको लगा कि वो गुप्त मिशन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, वो मोदी जी पूछते ना एक्स्ट्रा 2AB, चुनाव आयोग में एक्स्ट्रा 2AB, संधू जी और जोशी जी आ गए, अब वो एक्स्ट्रा 2AB ने गेम बिगाड़ दिया। सब कुछ सामने आ गया कि कैसे लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है।

0: watching India Today.
1: A very good morning to all our viewers. It's Sunday morning. You're watching India Today with me, Anjali Pandey. Lots lined up for you in this bulletin. But first, let's take a look at the headlines this morning. External Affairs Minister S. Jaishankar's blunt message to Pakistan over its bizarre claims says serial practitioner of terrorism misrepresented facts to UN General Assembly and that ties and terrorism cannot go along. He also says perpetrators of terrorism must mend its ways in a strong worded attack on Pakistan.
2: Become a serial practitioner of terrorism misrepresented facts before this assembly. Arguments were invoked to normalize terrorism and claim immunity from its consequences. That will not stand. Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised.
1: Election Commission holds crucial internal meet. Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioner Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi hold the meeting. Issue clarification that all its key decisions on special intensive revision had been taken with unanimous approval of all the three election commissioners. BJP hails EC's clarification. Former Kerala Chief Secretary G.G. Thompson alleges Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar advised him to contest 2019 Lok Sabha elections on a BJP ticket in 2016 and that he rejected the offer. Leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, says Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar is a recruit for BJP and Prime Minister and Home Minister are an umpire for ports. BJP calls Thompson's claim fabricated. Uproar over mysterious death of 22-year-old Nimisha Thakuria in Guwahati. Cops detain one named Asif Ali, who claims Nimisha hanged herself from a ceiling fan. Nimisha's family and neighbours protest demanding justice. VHP invokes love jihad in this case. Tamil Nadu leader of opposition Udayanidhi Stalin takes aim at Chief Minister Vijay over proposed new secretariat, mocks 1,200 crore rupees plan of the new secretariat, says Chief Minister would need a sea view to get into mood. Later clarifies he was referring to mood to work. Donald Trump rejects roadmap submitted by Iran to open Strait of Hormuz within a week. Iran says will wait for formal response from U.S. through mediators. Also says only a negotiated solution can get all out of this deadlock.
3: How do you look into the latest Iranian proposal?
4: I reject their proposal. They made a proposal, but I've rejected it.
1: And at the top of this hour, we're getting some breaking news from Jalandhar's lovely professional university where protests erupted at the campus. Chaos over unverified rape report. 2,000 LPU students protest over the viral rape claim. Protests turned violent and students even vandalized the campus. We're showing you the visuals also. Students smashed the windows and they also pelted bricks at the LPU campus. And there was a lot of damage that was caused to the infrastructure. Parts of buildings were set on fire amid the protests over the viral rape claims. And the private security at the campus, in the campus, was helpless as the violence escalated. And this, in fact, not just the LPU campus, the Jalandhar-Fagwara highway was also blocked by the students who were protesting. The LPU students staged protests on the national highway also. As per the cops, there's no evidence to substantiate the viral rape claim on which these protests were staged. The cops say that there has been no complaint that has been received in the alleged rape case, and a viral message triggered this unrest among the students. Heavy damage has been caused to LPU property in this protest staged by the students. The students allegedly damaged the campus signages, and they claim that a girl student died by suicide. So after rape, the student died by suicide. This is what the students are claiming. And the situation is now under control as per the cops. And the highway has also been reopened after the LPU protest. So on your screens right now, those are the visuals from inside the campus. You can see the kind of chaos that was there in the campus. This is the lovely professional university campus. A lot of damage has been caused to the infrastructure because of a viral rape claim, after which over 2,000 LPU students staged this protest. In fact, not just inside the campus, the students also staged protests on the national highway, the Jalandhar Fagwara highway, which has now been reopened, and the situation is now under control.
5: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਪੀਯੂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਨਾ ਰਿਊਮਰਸ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਯਹਾਂ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਯਹਾਂ ਰਿਊਮਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਥੇ, ਤੋ ਰਿਊਮਰਸ ਕੇ ਫੈਲਨੇ ਹੀ ਸੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਕਭੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਥੀ, ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਥੀ। ਤੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਡੀ ਸੇ ਹਮਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਏਂਗੇ।
1: And my colleague Aseem Bassi is now joining us with more details on this. Aseem, how did an unverified report trigger such a large-scale protest?
6: Well, as far as the SSP Gaurav Tura is concerned, who is SSP Kapoorthala, and this lovely professional university that comes under the jurisdiction of District Kapoorthala, as for him, there were messages of unverified rape spread inside the university. And after that, the students started protests. They vandalized the mall inside the lovely professional university, and they blocked the main highway also, although it was restored last night only. But now again, what is latest coming from reports coming from the highway, it is that it has been blocked again by the students, and they are demanding justice, they are demanding FIR, although the SSP and the police are repeatedly saying that these are unverified reports, there is no specific application, there is no specific name, and there's no specific things to the incident, what the students are claiming, and it is unverified. But a lot of chaos took place inside the lovely professional university last night, and the entire mall there was vandalized, the vehicles were damaged, fire was set on there near the gate. But now, although there is no violence as of now, but the students have yet again come on the Amritsar Delhi highway. They've blocked this highway again, and the police is present there in big number and trying to hold talks with the students. Yes.
1: All right, Aseem, thank you for those details. So protests turned violent at the lovely professional university after there were unverified reports of a rape of a student who allegedly died by suicide, and after which over 2,000 students staged this protest. They vandalized the property, and in fact, not just inside the campus, but they also staged protests on the national highway, the Jalandhar Fagwara highway. But as per the cops, there is no complaint that has been received in this matter, and the situation is said to be now under control. Some more news coming in. Ganga Expressway waterlogged after heavy rains. Ganga Expressway toll plaza submerged. This is being reported from Unnao in Uttar Pradesh. 5 to 6 feet water at the exit toll plaza. Toll routes go underwater after heavy rainfall. Vehicles were also seen stranded. A truck gets stuck on the flooded service road. These are the visuals from Unnao. This is the Ganga Expressway. As you can see, completely waterlogged, completely submerged. Water enters truck engine and the vehicle breaks down. Meanwhile, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has slammed the BJP over the Ganga Expressway flooding. He has said that rivers of BJP scam on Ganga Expressway. So that's the attack from the Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav. So these are the visuals from Ganga Expressway, which was inaugurated in April this year. And within months, you can see the state of and the situation at the Ganga Expressway. But it is also important to note that there has been heavy rainfall since last few days in Uttar Pradesh. And this is how the Ganga Expressway looks like, completely submerged. There's waterlogging and several vehicles were also stranded. In fact, a truck also broke down. The water entered its engine and the traffic has been impacted on the Ganga Expressway because of the waterlogging. There were several vehicles that broke down because of the waterlogging, because the water entered the vehicle engine. And meanwhile, politics has also erupted with the Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav slamming the BJP over Ganga Expressway. In fact, this is not the first time that these attacks are coming in. This is a case of waterlogging. Before this, there was a sinkhole on Ganga Expressway. Those visuals had emerged, after which there was a lot of politics that happened on the kind of material that was used for construction. And now this waterlogging is being reported. My colleague Santosh is now joining us with more details on this. Santosh, ek bar fir se Ganga Expressway ki ye tasveerein samne aa rahi hain, jisme ki ab waterlogging dekhne ko mil rahi hai. Pehle gaddha ho gaya tha, ab waterlogging dekhne ko mil rahi hai. Kya ye bhari barish ki wajah se hua hai, ya fir jo iske construction hai usme drainage ki quality up to the mark nahi hai, uski wajah se ye samne aa raha hai?
7: देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे शुरुआत होने के बाद ये पहली बारिश है और ऐसी बारिश बीते लगातार 48 घंटे से लगातार हो रही है. ऐसे में वाटर लॉगिंग गंगा एक्सप्रेसवे जैसे एक इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स पर बनाए जाने का दावा किया गया था, उस पर वाटर लॉगिंग हो रही है तो कई हादसों को भी दावत दे रही है. ये जरूर सवाल खड़े होते हैं रोड इंजीनियरिंग पर, मैकेनिज्म पर, जो मटेरियल यूज हुआ, जो डिजाइनिंग हुई, कि वहां पर वाटर लॉगिंग की व्यवस्था क्यों नहीं की गई. हालांकि तेज बारिश के चलते कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्याएं आई, लेकिन जिस तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे पर वाटर लॉगिंग देखी जा रही है कि गाड़ियां डूब रही हैं, कई जगहों पर हादसे हुए हैं, तो ऐसे में गंगा एक्सप्रेसवे पर वाटर लॉगिंग की ही समस्या एक ज्यादा बड़ी समस्या आई, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है तस्वीरों के जरिए हम कि कैसे अगर वाटर लॉगिंग होती है तो एग्जिट पॉइंट्स नहीं बनाए गए हैं. पानी अगर जलभराव होता है तो जलभराव के लिए क्या इंतजाम हैं, ये गंगा एक्सप्रेसवे पर काफी नजर नहीं आई, जिसकी वजह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं. और सबसे बड़ी बात कि विपक्षी दलों को ये मौका मिल गया कि कैसे गंगा एक्सप्रेसवे हो या कानपुर उन्नाव एक्सप्रेसवे हो, जो बनाए उत्तर बीजेपी सरकारों ने, उस पर विपक्षी दल हमलावर हैं. ये भ्रष्टाचार के चलते, रोड डिजाइनिंग में गड़बड़ी के चलते ऐसी समस्याएं होती हैं और इनके एक्सप्रेसवे ढह रहे हैं, जबकि इनको एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार अपनी उपलब्धि बनाती है, तो वही एक्सप्रेसवे का हाल दिखा करके विपक्षी दल भी हमलावर हैं. लेकिन इतना जरूर है कि बीते 48 घंटों से लगातार हो रही इस बारिश से वाटर लॉगिंग की समस्या गंगा एक्सप्रेसवे पर लगातार देखी जा रही है. जी
1: जी संतोष, हमारे साथ बने रहिए. एंड लेट्स आल्सो टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट फ्रॉम द गंगा एक्सप्रेसवे ऑन द करंट सिचुएशन.
8: मेरी मौजूदगी कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर गंगा एक्सप्रेसवे के एग्जिट टोल प्लाजा के पास है. देख सकते हैं सोनिक पर स्थित ये गंगा एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है, जो मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया था. यहाँ पर एग्जिट पोल है. एग्जिट पोल में देखिए किस तरीके से दो दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते एक बार फिर से ये टोल प्लाजा पानी में पूरी तरीके से डूब गया है. हालांकि आगे जाएंगे तो 5 फीट तक का पानी है और साइड सर्विस रोड पर देखेंगे तो एक ट्रक है, जो ट्राला है, वो खराब हो गया है पानी की वजह से, क्योंकि वहां पर गड्ढा था या किसी वजह से इंजन इसका बंद हो गया, जो कि वहां पर खराब होकर के खड़ा हो गया है. जो चालक है वो उतर करके चले गए. और पीछे देखिए जो कार्यदायी संस्था है गंगा एक्सप्रेसवे की, वो कहीं ना कहीं पानी निकालने की एक बार फिर से जद्दोजहद पर लगी हुई है. जनरेटर लगा दिए गए हैं, दो दो तीन तीन इस बार जनरेटर लगे हैं. पिछली बार जब हमने यहाँ की खबर दिखाई थी तो 2 जनरेटर लगा करके इस गंगा एक्सप्रेसवे पर जो टोल प्लाजा पर पानी भरा था उसको निकालने की कोशिश की जा रही थी. लेकिन अब देखिए कार्यदायी संस्था जो है जेसीबी से और जो साइड रोड और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच की रोड है उसको खोद करके यहां से पानी जनरेटर द्वारा से निकाल करके वहां उस गड्ढे में डालने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से यहां से पानी कम हो सके. हालांकि पानी कम कैसे होगा ये भी आपको दिखा दें. ये जो सर्विस रोड है और गंगा एक्सप्रेसवे की रोड है, दोनों समतल बराबर है, जिस वजह से सर्विस रोड पर भी आने वाला पानी इस गंगा एक्सप्रेसवे के टोल पर आ रहा है. और टोल देखिए इधर आपको कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर दिखाएं आपको, टोल देखिए, टोल में कम से कम 4 से 5 फीट तक का पानी भर चुका है। और देखिए बगल में जो जनरेटर लगा हुआ है, ये भी कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको दिखाएं, जनरेटर जो यहाँ पर रखा हुआ है वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब गया हुआ है। हालांकि यहाँ पर टोल पर अभी भी कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है। टोल केबिन के अंदर देखेंगे, कैमरा मैन से कहेंगे कि जूम करके आपको दिखाएं कि टोल केबिन के अंदर तक पानी भर चुका है। जो टोल केबिन यहाँ पर ऑपरेट करते थे वो यहाँ से हट गए क्योंकि पानी पूरा केबिन तक घुस गया है। इससे अभी एक से डेढ़ महीना पहले भी लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा एक्सप्रेस वे की पोल खुल गई थी। हालांकि कार्यदायी संस्था का कहना था कि कार्य किया जा रहा है, पानी निकाला जा रहा है, लेकिन 2 दिन से लगातार हो रही छुटपुट बारिश ने एक बार फिर से 594 किलोमीटर का बना गंगा एक्सप्रेस वे की पोल खोल के रख दी है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये सोनिक कानपुर लखनऊ स्थित सोनिक क्षेत्र में जो ये एग्जिट पोल है जो मेरठ से उन्नाव की ओर उतरता है, उस एग्जिट पोल पर टोल प्लाजा पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। हालांकि कार्यदायी संस्था द्वारा यहां पर कार्य कराया जा रहा है कि पानी को किसी तरीके से निकाला जाए, लेकिन लगातार जद्दोजहद के बाद घंटों से मशक्कत यहां पर की जा रही है, उसके बावजूद भी यहां पर पानी नहीं निकाला जा सका है। मेरे पीछे आप देखेंगे कि कुछ लोग अपनी गाड़ियां रोक करके भी खड़े हुए हैं, वो यहां से निकलना चाहते हैं लेकिन गाड़ी अपनी रोक दी है क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनकी गाड़ी यहाँ पानी पर ना फंस जाए। कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको दिखाएं कि मैं अभी वहां से चल के किनारे तक आ गया हूँ और मेरे लगभग घुटने तक 1 से 1.5 फीट तक ये पानी आ चुका है।
1: And some more news coming in. Yogi Bastian flooded. Political fight erupts in BJP. So floods take down Gorakhpur is pain claimed by BJP MP Ravi Kishan. And BJP councillor versus MP Ravi Kishan erupts over the waterlogging in Gorakhpur. So the councillor raised the waterlogging issue with the BJP MP from Gorakhpur, Ravi Kishan. And the local MP then snaps. Ravi Kishan asks, have you joined Samajwadi Party? To which the BJP councillor hits back, have you joined BSP? So that was the war of words between the councillor and BJP MP Ravi Kishan over the waterlogging in Gorakhpur. Ravi Kishan had claimed, remember, just a few weeks ago in August, he had claimed that Gorakhpur is now Spain. And within weeks, those claims have been shattered. And the development claims, the Vikas claims, the Gorakhpur is Spain claims lie under water now.
9: पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया
10: पूरा
9: आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या हेलो अरे महाराज अगर तरकुलानी और ये क्या बोलते हैं आपका पाम वाला चालू होता तो वार्डो में लगभग हम बता रहे 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पे सुनिए 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पानी लगा जहां कभी पानी नहीं लगता था। स्थिति ये है आखिर इतना नाली नाला किस लिए बना है पानी अगर नहीं बना है सांसद जी अगर रेगुलेटर सही टाइम पे ऑपरेट नहीं होगा पानी भरवा करेगा।
1: And the waterlogging issue has also debunked the Gorakhpur has become Spain claim, which was made by Gorakhpur MP from the BJP, Ravi Kishan, just a few weeks ago. Listen in.
11: लोग गोरखपुर से अनगर्व करते हैं हमके लगा रहा स्पेन हमके लगा रहा यह अद्भुत जगह हमके एक स्मार्ट सिटी लगा ला कहे कि हम सब जगह देख ले आई मुझे लगता है तुम अंधा है आंख का तो हम क्या करेगा लोग गोरखपुर से अनगर्व करते हैं हमके लगा रहा स्पेन हमके लगा रहा यह अद्भुत जगह हमके एक स्मार्ट सिटी लगा ला कहे कि हम सब जगह देख ले आई मुझे लगता है तुम अंधा है आंख का तो हम क्या करेगा।
1: So in August, Ravi Kishan had made these claims that he sees Spain in Gorakhpur. Gorakhpur has become Spain and within just weeks, there's severe waterlogging that is being reported from Gorakhpur. And after a councillor raised these concerns, there was a war of words that erupted between the councillor and the MP, questioning each other, have they joined the opposition parties? And my colleague Santosh Sharma is now with us on this story. Santosh, अगस्त में रवि किशन ने ये दावा किया था कि स्पेन बन चुका है गोरखपुर, लेकिन बस कुछ हफ्तों के अंदर ये जो सारे बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे उन पे पानी फिरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इतनी वाटर लॉगिंग हो गई है गोरखपुर में और उसके ऊपर जब ये कंसर्न्स और जब ये इशू रेज किया गया पार्षद की तरफ से रवि किशन को, तो रवि किशन का जवाब था कि आपने सपा ज्वाइन कर ली है क्या?
7: देखिए बिल्कुल, ये गोरखपुर के बेतिया हाता इलाके के पार्षद हैं विश्वजीत त्रिपाठी, उन्होंने लोकल सांसद होने के नाते रवि किशन को जब फोन किया कि उनके इलाकों में वाटर लॉगिंग हो गई है और जिन इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या बताई गई वहां कभी वाटर लॉगिंग हुई नहीं, भारी बारिश होती रही गोरखपुर में लेकिन कभी वाटर लॉगिंग नहीं हुई, इसको लेकर के जब पार्षद ने सांसद रवि किशन से शिकायत की तो उसके बाद रवि किशन देर रात गोरखपुर में निकले, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया, लेकिन जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो वायरल हुआ उसमें रवि किशन कहते नजर आए कि आपने क्या समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। वजह ये थी कि सांसद रवि किशन को लगा कि वो किसी को सुना रहे हैं, दूसरी चीज वो कमियां गिना रहे हैं, इस तरीके से कमियां गिना रहे हैं जैसे वो विपक्षी दल में शामिल हो गए हो। यही वजह है कि उन्होंने जब कहा, सांसद ने कहा पार्षद से कि आपने क्या समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो पलटवार में उस पार्षद ने भी कह दिया कि आपने क्या क्या बसपा ज्वाइन कर ली। तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये ज्यादा इसलिए क्योंकि अभी कुछ हफ्ते पहले ही रवि किशन ने एक जनसभा के दौरान कहा कि जब मैं गोरखपुर आया तो मुझे लगा अद्भुत शहर में आ गया हूं और ये मुझे स्पेन की तरह लगा, यानी सर पर दौड़ती हुई सड़कें, वाटर लॉगिंग की समस्याओं को दरकिनार करते हुए गोरखपुर को स्पेन से तुलना कर दी, और जब स्पेन से तुलना कर रहे थे और 48 घंटे की लगातार बारिश में जगह जगह जलभराव हो गया तब पार्षद ने शिकायत की, तो लिहाजा ये मामला अब राजनीतिक हो चला है। वजह की रवि किशन वहां से सांसद है और जो शिकायतकर्ता वो भी बीजेपी का पार्षद है, लेकिन ये एक ब्लैक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, ऐसे में वहां पर जलभराव की समस्या और सांसद और पार्षद के बीच में इस तरीके का जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है ये राजनीतिक रंग ले रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीते 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, वाटर लॉगिंग की समस्याएं हर शहर में है, लेकिन जिस तरीके से कुछ हफ्ते पहले दिए गए रवि किशन के बयान की गोरखपुर तो स्पेन हो गया है और उसके बाद 48 घंटे की बारिश में ही गोरखपुर का स्पेन वाटर लॉगिंग में जूझ रहा है, लोग घुटनों के तक पानी में निकलने को मजबूर हो रहे हैं, तो ऐसे में ये राजनीतिक रंग ले रहा है। जहां पर रवि किशन कह रहे हैं कि तुमने सपा ज्वाइन कर ली, तो पार्षद ने भी पलटवार में कहा कि क्या आपने बसपा ज्वाइन कर ली, तो ये एक पूरा विवाद खड़ा हो गया है।
1: जी संतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। सो देयर इज अ वॉर ऑफ वर्ड्स दैट हैज इरप्टेड विद इन द बीजेपी ओवर वाटर लॉगिंग इन गोरखपुर। रिमेंबर इट्स द बैस्टियन ऑफ उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। रवि किशन इज द एमपी फ्रॉम गोरखपुर एंड आफ्टर अ काउंसिलर from Gorakhpur raised some concerns over waterlogging to Ravi Kishan. Ravi Kishan in return asked him, have you joined the Samajwadi Party? In fact, after that call, BJP MP Ravi Kishan also inspected the situation of waterlogging in Gorakhpur. And let's listen into what he said.
12: जैसे बरसात एक दो घंटा तीन घंटा नहीं रहेगी तो पहले जो पानी था वो डेफिनेटली सारे वे आउट है, सारे नाले बने हुए वो चले जाएंगे अपनी जगह पे। बरसात की जो फोर्स था वो 15 से 19 साल में कभी किसी ने ऐसी बरसात ऐसी बारिश नहीं देखी। बादल फटा, क्या हुआ कुछ नहीं, और पूरे शहर में काफी पानी भर गया। अब पानी काफी जगह से उतर रहा है, अब दो तीन घंटे में नहीं होगा तो और पानी नीचे उतर आएगा। तैयारी प्रशासन की हमेशा रहती है। महाराज जी ने दो दिन पहले भी नगर आयुक्त जी को, मेयर साहब को बताया था कि उनको भी सूचना थी 25-26 को बरसात होगी, उन्होंने बताया भी था और उसकी पूरी तैयारी। ऐसा नहीं कि प्रशासन ने हर जगह पे अपनी उसको पुल आउट मशीन हर जगह पे लगी हुई थी।
1: And now shifting focus, amid growing claims of internal rift, the Election Commission held a crucial internal meeting attended by the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi. This was the first meeting held after a report pointed out that the Election Commissioners objected at least 14 times over 10 months to decisions and orders related to the SIR process. The Election Commission has addressed the allegations and issued a clarification that all its key decisions on special intensive revision had been taken with the unanimous approval of all the three commissioners. The BJP has hailed the Election Commission's clarification, saying that the poll body has made it clear that every decision relating to the SIR was taken unanimously, and the Congress is still building its allegations on lies and attacking constitutional bodies. As NDA allies too call for clarity, Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu has backed the Election Commission, saying that its unanimous clarification reaffirms the integrity and credibility of constitutional institutions and puts all misconceptions to rest.
13: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए। इन फैसलों की जानकारी हम आज के ECI प्रेस नोट के माध्यम से दे रहे हैं। धन्यवाद।
14: Constitution of India says that the meeting that the Election Commission held with the Cabinet Secretary was not regarding any policy matter of the Election Commission of India, neither related to any IT department work. ये Election Commission के किसी policy matter पर विषय नहीं था और न ही आईटी डिपार्टमेंट संबंधित किसी विषय को लेकर वो कैबिनेट सेक्रेटरी के पास गए थे। सरकार के भिन्न भिन्न स्तरों पर चर्चा होती है तो उसी विषय पे चर्चा हुई है, मगर इस प्रकार उसे कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि असहमति के कारण चर्चा हुई। और सहमति वाले विषय में भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चिट्ठी में स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो SIR हुआ है वो SIR तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर, तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है।
15: द प्रेस नोट आफ्टर द मीटिंग ऑफ द इंटायर इलेक्शन कमीशन क्लियरली स्टेट्स दैट ऑल द डेवलपमेंट अबाउट SIR इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री वॉज फाउंड टू बी वैलिड and legally permissible by the Supreme Court of India. Supreme Court ने पूरे SIR की प्रक्रिया को चैलेंज करते हुए कौन लोग गए थे? कांग्रेस पार्टी गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी गई थी, CPM गई थी और TMC तो दर्जनों केस किया था उन्होंने। तो सबको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने SIR को ओके कहा।
16: ഇതല്ലേ 24 മണിക്കൂർ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം? ഈ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം? 24 മണിക്കൂറും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലേ? ഇതല്ലേ ജനം ഇളകേണ്ട പ്രശ്നം? ഇളകിയെ പറ്റൂ. ഈ ഗവൺമെന്റ് ഇല്ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ്.
17: ഫോം 6 അമെൻഡ്മെന്റ് ഇസ് ഇല്ലീഗൽ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് അമെൻഡിംഗ് ദ 1960 റൂൾസ്. നമ്പർ 1. നമ്പർ 2. ത്രൂ ദാറ്റ് ഇല്ലീഗലി അമെൻഡഡ് ഫോം 6 you conducted an SIR in Bengal and Bihar. The deletions made through that illegal form 6, through that SIR, are illegal. And if the deletions are illegal in West Bengal and Bihar, the mandate is unconstitutional. This is the fundamental issue which we were waiting, we were expecting that they will talk about, they will address. This has not been addressed. Objection to yahi thi. This was the objection of Sandhu and Joshi.
1: And now let us take a look at the decisions that were taken at this key election commission meeting amid the internal rift claim. So the first decision that was taken was that the deadlines of Delhi and Maharashtra SIR have been extended. And the election commission also decided that the Delhi deadline to file claims will be extended till October 30th. And Maharashtra deadline to file the claims will be extended till October 12th. And the Goa BLO's will be conducting house visits to the left-out voters. So these were the crucial decisions that were taken in yesterday's Election Commission's meeting. In fact, There was also a point-by-point rebuttal by the Election Commission. Let's also take a look. So the Election Commission is facing a barrage of questions over the functioning of the poll panel and the ongoing SIR exercise. The Commission's response is that the allegations do not reflect how its final decisions were actually taken. So on the alleged split within the Election Commission over SIR, the poll body says that there may have been differences during internal discussions, but the SIR orders themselves were approved unanimously by all three commissioners. The Commission says that this applies to the Bihar SIR and subsequent SIR orders covering 12 and then 19 states and union territories. Then on the charge that the CEC bypassed the two election commissioners, the poll body has clarified, saying that internal objections and differences should not be confused with the final institutional decision-making process. The reported objections are real, but the Election Commission maintains that the major SIR decisions were ultimately unanimous. Then on Form 6, the Commission's defence is particularly specific. It says that Form 6 itself was not changed. Instead, an additional SIR declaration, Annexure D, was required alongside it. Online systems may display the two together, but EC says that statutory Form 6 remains unchanged. On the allegation that young voters were effectively prevented from enrolling, Election Commission says that the numbers tell a different story. It says 2.73 crore voters aged between 18 and 28 have been added to the roll since SIR began in 2025. The Election Commission stresses that electoral rolls can be continuously updated rather than only during a formal revision. And on ECI net and centralization, the poll body's position is that the platform is not taking away the statutory authority of field level officials. The Election Commission says that access is role-based. It asserts that electoral roll powers continue to rest with the designated officials. And on the letter to the Cabinet Secretary, poll panel says that this was not a letter concerning its policy or IT division. The Election Commission says it was related to the working of an officer on deputation. It also says that the officer's proposed changes to the allocation of work were never implemented. And it added that the Deputy Election Commissioner continued to supervise and oversee the IT division. Then on concerns that SIR could leave vulnerable voters behind, the Commission points to field intervention, the yellow house visits, assistance centres and special camps, including measures aimed at helping homeless and other vulnerable voters. On notice holders being forced to appear personally before EROs, the poll body has said that the personal appearance is not mandatory and that the verification process can be facilitated through online mechanisms. And finally, on short deadlines, ECI has pointed to extensions. In Delhi and Maharashtra, the claims and objections period was extended. And meanwhile, the NDA allies have backed the poll panel. So after raising questions on the Election Commission and the Chief Election Commissioner, now the NDA allies have backed the poll panel after the clarification. The BJP has said that SIR decisions were unanimous and the opposition is misleading public. Why accept polls when you win and target the Election Commission when you lose? The TDP, which is an NDA ally, has now said that EC clarification reaffirms institutional credibility and that the SIR move was taken collectively and need public trust on that. The JDU has said that the opposition should now show proof and not manufacture lies on Election Commission. And it has also said that don't target constitutional bodies without any facts. LJP Ram Vilas has said that opposition is creating confusion and the Election Commission has now clarified. The Election Commission's clarity will now boost public trust. And with that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today. More news and updates will continue on the other side.
18: You are watching India Today.

0: Hello and welcome to the latest edition of It's Gone Viral. In the next half an hour, we will be showing you some of the images and videos that have gone viral last week and created some buzz.
1: आज मैं बना हूँ लड़की, ये देखने के लिए दिल्ली में रात को लड़कियाँ कितना सेफ है। और एंड में जो मेरे साथ हुआ वो आपने सोचा भी नहीं होगा। शुरुआत करी लड़की की ड्रेस पहनकर और फिर मेकअप के लिए बैठ गया। मेकअप कराते कराते मुझे शर्म आने लगी और फिर डांट भी पड़ गई।
2: खोला
3: आधी खोल। A late night scooter ride through Delhi became an unsettling experiment when a content creator disguised himself as a woman to experience the city after dark.
1: पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पे गया तो ये दोनों लगातार घूरे जा रहे थे, जैसे कि मुझे खा जाएंगे। भैया भी शॉक हो गए जब उन्हें पता लगा मैं लड़की नहीं लड़का। और ये देखो इनको, साइकिल पर है लेकिन पूरा दम लगा दिया अच्छे से घूरने के लिए। और ये दोनों मुझे देखकर रुक गए और वेट करने लगे और फिर पीछा करके मेरे पास आने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक और आदमी मेरे पास आकर कुछ कुछ बोलने लगा।
3: He said the ride involved prolonged stairs, unwanted approaches and vehicles repeatedly getting in his way.
1: Thodi aur aage gaya to ye do auto wale mere samne janmuchkar rok rahe the. Ek auto wale ne to mere doston ko video banate hue dekha, isliye wo piche ruk gaya. Lekin ye dusra auto wala bar bar apna auto leke mere paas aa raha tha.
4: Chala gaya ghoor ke.
1: Kuch der baad mera do gaadiyon ne bhi picha kiya. Ye pehli gaadi aur ye dusri gaadi ne bhi kafi der tak picha kiya.
5: Bhai ye bahut scary ho gaya hai, ab mujhe lag raha hai ki band kar dena chahiye isko. Pichle 2 ghante mein itna disgusting ho gaya na mere liye. Cycle wala, bike wala, auto, car sabne picha karne ki koshish kari hai. Bhai bilkul safe nahi hai ladkiyon ke liye raat mein khela nikalna. Sach mein ladkiyon ki life
3: A tea seller on a train went beyond serving chai when he spotted an exhausted mother struggling with her crying child after a medical trip to Gorakhpur. He first offered her tea before taking it upon himself to entertain the little one.
6: आज मैं दिखाऊंगा जापान का एक पब्लिक टॉयलेट कितना फ्यूचरिस्टिक है।
7: हाई टॉयलेट, प्लीज टर्न ऑन द सिंक।
3: मुंबई कंटेंट क्रिएटर सार्थक सचदेवा वाज लेफ्ट अमेज्ड बाय अ जापानीज पब्लिक टॉयलेट पैक्ड विद हाईटेक फीचर्स।
6: ऑटोमेटिक खुल जाता है
8: भाई, मतलब सिर्फ आपके वॉइस कंट्रोल से यहाँ इतने सारे कमांड्स लिखे हैं जिससे कि आप बिना छुए पूरा टॉयलेट यूज कर सकते हो, जिससे कि जर्म्स भी नहीं फैलते। हाई टॉयलेट।
3: From turning on the tap to unlocking the bathroom door with a QR code, the futuristic setup has left social media equally surprised.
6: यहाँ पे command दे सकते हो। ऐसी चीज life में कभी नहीं देखी थी और सच में जापान future में जी रहा है।
3: Truck driver vlogger Rajesh Ravani showcased a truck that looks more like a customized home on wheels. Cabin features a sofa-like seat, a 180-degree rotating driver's chair and motorized blinds, giving his workplace a surprisingly luxurious makeover.
9: Let me introduce to you my 81-year-old grandmother. She is a businesswoman, an avid traveler still in the age of 81.
3: An 81-year-old grandmother from Gurgaon is showing no signs of slowing down.
9: Dadi, tell us about life recently. What have you been up to? Have you been traveling?
10: Yes, I have been to Alaska for my cruise. I have really enjoyed it.
9: At 81 years old?
10: Yeah.
3: From cruising to Alaska to running her own business and maintaining a packed social calendar, her active lifestyle has left her granddaughter completely amazed.
9: What would you say?
10: Say that they should enjoy their life, they should work hard and eat good food. At the same time, they should look after themselves.
9: Cheers, Dadi.
10: Cheers.

0: The Chief Election Commissioner should resign immediately. There are a number of political parties which have demanded the same thing. It's now clear that the Chief Election Commissioner is acting as though he is the sole election commission. He is speaking for the Election Commission when the record shows that the two fellow election commissioners have disagreed.
1: देखिए राहुल गांधी को हर चीज में आपत्ति है, इलेक्शन कमीशन से आपत्ति है, ईवीएम से आपत्ति है, वोटर से आपत्ति है, नरेंद्र मोदी जी से आपत्ति है, एसआईआर से आपत्ति है। मुझे बताइए कि साफ स्वच्छ राजनीति जो अब चाहते हो, साफ स्वच्छ प्रजातंत्र चाहते हो, तो इलेक्टोरल रोल्स को क्लीन अप करने की आवश्यकता है या नहीं? जो बोगस वोटर्स हैं, जो लोग बाहर से आए हैं और वहाँ बैठे हैं वोट कर रहे हैं, उनको निकालने की आवश्यकता है या नहीं? घुसपैठ है या नहीं? ये सभी सवालों के ऊपर वो आत्मचिंतन करें तो उनको ये सभी सवालों का जवाब मिलेगा। एसआईआर सिर्फ अपने काम कर रहे हैं।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: are watching India Today.
1: Very good morning to all our viewers. You're watching India Today. I am Anjali Pandey. Lots lined up for you in this bulletin. But first, let's take a look at the headlines this morning. External Affairs Minister S. Jaishankar's blunt message to Pakistan over its bizarre claims says serial practitioner of terrorism misrepresented facts to UN General Assembly and that ties and terrorism cannot go along. External Affairs Minister says that perpetrators of terrorism must mend its ways in a strong worded attack on Pakistan.
2: A serial practitioner of terrorism misrepresented facts before this assembly. Arguments were invoked to normalize terrorism and claim immunity from its consequences. That will not stand. Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised.
1: Election Commission holds crucial internal meet. Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, Election Commissioner Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi hold meeting. Issue clarification that all its key decisions on special intensive revision had been taken with the unanimous approval of all three election commissioners. BJP hails Election Commission's clarification. Former Kerala Chief Secretary G.G. Thompson alleges Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar advised him to contest 2019 Lok Sabha polls on a BJP ticket in 2016 and that he rejected the offer. Leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, says Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar is a recruit for BJP and Prime Minister and Home Minister an umpire for polls. BJP calls Thompson's claim fabricated. Protest by students of Lovely Professional University over an unverified report of rape of a female student by an outsider on university campus turns violent. Protesters damaged campus property, set objects on fire. Jalandhar Fagwada Highway also blocked but has now been reopened. Uproar over mysterious death of 22-year-old Nimisha Thakuria in Guwahati. Cops detained one named Asif Ali, who claims Nimisha hanged herself from a ceiling fan. Nimisha's family and neighbours protest demanding justice. VHP invokes love jihad in the case. Udayanidhi Stalin takes aim at Chief Minister Vijay over proposed new secretariat. Mock's 1,200 crore rupees plan of new secretariat says Chief Minister would need a sea view to get in mood. Later clarifies he was referring to mood to work. Donald Trump rejects roadmap submitted by Iran to open Strait of Hormuz within a week. Iran says will wait for formal response from United States through mediators. Also says only a negotiated solution can get all out of this deadlock.
3: How do you look into the latest Iranian proposal?
4: I reject their proposal. They made a proposal, but I reject it.
1: And we're getting some breaking news. Thar horror in Uttar Pradesh's Muradabad. Speeding Thar rams into an e-rickshaw. Deadly Thar e-rickshaw crash was caught on CCTV. Speeding Thar crashed into the parked e-rickshaw and the rickshaw driver dies after Thar rams into the vehicle. We'll show you the CCTV visuals. CCTV captures the high-speed Thar crash. We'll try to show you the visuals in full frame of the crash that was caught on the CCTV in which the Thar rammed into the parked e-rickshaw. And the Thar occupants took the injured driver to the hospital and after which they fled their hospital. And the e-rickshaw driver, has died after this accident. The driver was declared dead at the hospital after the crash, after which the Thar drivers fled the spot. And this happened on the Muradabad-Agra highway. This was the deadly crash that was caught on camera, in which you can see the Thar slamming into the e-rickshaw, which was parked on the road on this highway, in which the driver has now been killed. So there you see how the Thar comes and rams into the e-rickshaw. And this is a waterlogged road, as you can see in these visuals from Moradabad. And after which the Thar driver took the e-rickshaw driver to the hospital where he was declared dead. My colleague Santosh Sharma is now joining us with more details on this. Santosh, kya koi action liya ja chuka hai abhi tak Thar driver ke khilaf?
5: देखिए मुरादाबाद में जो ये सड़क हादसा हुआ है इसमें थार ड्राइवर ने ही खुद उस ई रिक्शा चालक को जो घायल होने के बाद उसको अस्पताल पहुंचाया जहां उसकी डेथ हो गई, लिहाजा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन ये जो किनारे खड़े ई रिक्शा में टक्कर मारी जिसमें ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और उस इलाज के दौरान उसके अस्पताल में मौत हो गई। फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है, पुलिस पड़ताल कर रही है। जो थार का ड्राइवर था, थार आइडेंटिफाइड है, जो थार का ड्राइवर है वो हिरासत में लिया जा चुका है। लेकिन अभी पुलिस ये पड़ताल जरूर कर रही है कि जो थार ड्राइवर था उसने जानबूझ कर टक्कर मारी या किन परिस्थितियों में टक्कर मारी, ये जरूर पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं पीछे के रास्ते से ताकि थार की स्पीड का भी पता चला जा सके कि कितनी स्पीड में थार चल रही थी या फिर ये वाटर लॉगिंग के चलते अनियंत्रित होकर थार ये टकराई और जिसके चलते ई रिक्शा चालक की मौत हो गई।
1: जी संतोष, हमारे साथ बने रहिए। सो देयर यू सी अ ब्लैक एसयूवी, हाउ इट रैम्स इनटू एन ई रिक्शा व्हिच वाज पार्क्ड ऑन दिस वाटरलॉग्ड रोड इन मुरादाबाद, आफ्टर व्हिच द एसयूवी ड्राइवर टुक द ई रिक्शा ड्राइवर टू द हॉस्पिटल एंड व्हाइल अंडरगोइंग ट्रीटमेंट द ड्राइवर लॉस्ट हिज लाइफ एंड आफ्टर व्हिच द एसयूवी ड्राइवर्स आल्सो फ्लेड द हॉस्पिटल। नाउ एज पर द लेटेस्ट डिटेल्स द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड एंड द अक्यूज्ड ड्राइवर हैज आल्सो बीन अरेस्टेड। Some more news coming in from Uttar Pradesh. Close shave for Uttar Pradesh Dibai BJP MLA CS Lodhi. BJP MLA Chandrapal Singh Lodhi injured in car crash. The MLA's Fortuner. This was also an SUV. The white SUV crashes after tire burst. Horrific accident was caught on camera. This is on the Ganga Expressway in Uttar Pradesh. The car loses control and crashes into a pole. The BJP MLA Chandrapal Lodhi has had a narrow escape in this accident. The tire burst triggers the car crash on Ganga Expressway. Two have been injured in this car crash, including the BJP MLA. The BJP MLA has been injured and is now undergoing treatment in Hapur. And this happened in Bulandshahr in Uttar Pradesh, where this car, the tire of the car burst as per reports, and the car then crashed into the pole. And as you can see in these visuals, the entire accident was caught on camera. And as you can see how the car skids, and this was because of a tire burst is what we are learning. And then eventually the car crashed into a pole and two people have been injured, including the BJP MLA. My colleague Santosh Sharma continues to stay with us. Santosh, aur kya jankari mil rahi hai is crash ke bare mein aur abhi jo BJP MLA unki halat kaisi bani hui hai?
5: देखिए ये बुलंदशहर के डिबाई विधानसभा के बीजेपी विधायक हैं रामचंद्र लोधी, जो लखनऊ से अपने घर की तरफ जा रहे थे तभी इनका एक्सीडेंट हुआ। उनकी जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी उसके पीछे का टायर फट गया और जिसकी वजह से अनियंत्रित होकर ये एक्सीडेंट हुआ, जिसमें इनके साथ में चल रहे दो इनके सहयोगी और गनर घायल हुए हैं। लेकिन बीजेपी विधायक गंभीर रूप से घायल हैं। उनको पहले शुरुआत में हापुड़ में भर्ती कराया गया था, उसके बाद बताया जा रहा कि रिब्स में चोट है जिसकी वजह से उनको दिल्ली रेफर किया गया है। लेकिन अभी जो बाकी दो इंजर्ड हैं उनकी हालत सामान्य थी, लेकिन गंभीर रूप से चोट लगने के चलते बीजेपी विधायक को दिल्ली रेफर किया गया है। उनके परिजन उनको दिल्ली रेफर करके ले गए हैं बेहतर इलाज के लिए। उनके कई जगह पर चोट आई है और उन चोटों को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। लेकिन ये पूरा हादसा बुलंदशहर के डिबाई बीजेपी से विधायक रामचंद्र लोधी जब लखनऊ से लौट रहे थे तब हुआ है, गंगा एक्सप्रेसवे की घटना है।
1: जी संतोष, हमारे साथ बने रहिए। सो दोज आर द विजुअल्स ऑफ द कार क्रैश। द बीजेपी एमएलए हैज बीन सिवियरली इंजर्ड इन दिस एक्सीडेंट। द कार क्रैश इनटू अ पोल एंड दिस इज ड्यू टू अ टायर बर्स्ट दैट लेड टू दिस एक्सीडेंट, द कार लूजिंग कंट्रोल एंड देन इवेंचुअली हिटिंग इनटू अ पोल। सम मोर न्यूज कमिंग इन।

देश भर में एसआईआर के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हमारे ज्ञानेश गुप्ता, अब वो गुप्ता जी का एक गुप्त मिशन चल रहा है, वो गुप्त मिशन अब गुप्त नहीं रहा, अब वो गुप्त मिशन सार्वजनिक हो गया, सबके सामने आ गया। उनको लगा कि वो गुप्त मिशन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, वो मोदी जी पूछते ना एक्स्ट्रा 2AB, चुनाव आयोग में एक्स्ट्रा 2AB, संधू जी और जोशी जी आ गए, अब वो एक्स्ट्रा 2AB ने गेम बिगाड़ दिया, सब कुछ सामने आ गया कि कैसे लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है।

0: the Chief Election Commissioner should resign immediately. There are a number of political parties which have demanded the same thing. It's now clear that the Chief Election Commissioner is acting as though he is the sole election commission. He is speaking for the election commission when the record shows that the two fellow election commissioners have disagreed.
1: राहुल गांधी को हर चीज में आपत्ति है, इलेक्शन कमीशन से आपत्ति है, ईवीएम से आपत्ति है, वोटर से आपत्ति है, नरेंद्र मोदी जी से आपत्ति है, एसआईआर से आपत्ति है। मुझे बताइए कि साफ स्वच्छ राजनीति जो अब चाहते हो, साफ स्वच्छ प्रजातंत्र चाहते हो, तो इलेक्टोरल रोल्स को क्लीन अप करने की आवश्यकता है या नहीं? जो बोगस वोटर्स हैं, जो लोग बाहर से आए हैं और वहाँ बैठे हैं वोट कर रहे हैं, उनको निकालने की आवश्यकता है या नहीं? घुसपैठ है या नहीं? ये सभी सवालों के ऊपर वो आत्मचिंतन करें तो उनको ये सभी सवालों का जवाब मिलेगा। एसआईआर सिर्फ अपने काम कर रहे हैं।

0: are watching India Today.
1: A very good morning to all our viewers. You're watching India Today with me, Anjali Pandey. Lots lined up for you in this bulletin. But first, let's take a look at the headlines this hour. External Affairs Minister S. Jaishankar's blunt message to Pakistan over its bizarre claims, says serial practitioner of terrorism misrepresented facts to UN General Assembly and that ties and terrorism cannot go along. External Affairs Minister says perpetrators of terrorism must mend its ways in a strong worded attack on Pakistan.
2: A serial practitioner of terrorism misrepresented facts before this assembly. Arguments were invoked to normalize terrorism and claim immunity from its consequences. That will not stand. Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised.
1: Election Commission of India holds crucial internal meet. Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, Election Commissioner Subir Singh Sandhu and Vivek Joshi hold meeting, issue clarification that all its key decisions on special intensive revision had been taken with unanimous approval of all the three election commissioners. BJP hails Election Commission's clarification. Former Kerala Chief Secretary G.G. Thompson alleges Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar advised him to contest 2019 Lok Sabha polls on a BJP ticket in 2016 and that he rejected the offer. Leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, says Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar is a recruit for BJP and Prime Minister and Home Minister an umpire for polls.
3: Man ki baat ke September maah mein phir se ek baar aapko milne ka avsar mil raha hai. मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है sec.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की ये तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा, बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था, तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी IIT BHU से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया, यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं, मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए, जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था, बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवरता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना, उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत के इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं। स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है, कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहाँ फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था। तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहेजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही हैं। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है। एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े, और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं, यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है, और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे, इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे। 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने अचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं, और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है, और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है, और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही हैं। ओडीओपी के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही है। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित ना रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती हैं। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई हैं। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा, घर घर मुनगा ये अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए, वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहाँ भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहाँ आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहाँ हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।

0: ये इसलिए कर रहे हैं उनके माता जी का, जो वो 83 में भारत की नागरिकता ली और 80 में होड़जरी करके वोट दिया और कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया उनके पिटीशन को, इसको डाइवर्ट करने के लिए ये चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं।
1: हम लोग सब लोग चाहते इस्तीफा होनी चाहिए उनकी और गिरफ्तारी होनी चाहिए, बल्कि ये तो अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो हमने इस पहले भी इस बात को जो है कहा था, राज बिहार भर के हर जिलों में राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन ये अभी बस शुरुआत है। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो लंबी लड़ाई होगी, अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे।

0: देश भर में एसआईआर के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हमारे ज्ञानेश गुप्ता, अब वो गुप्ता जी का एक गुप्त मिशन चल रहा है, वो गुप्त मिशन अब गुप्त नहीं रहा, अब वो गुप्त मिशन सार्वजनिक हो गया, सबके सामने आ गया। उन्होंने, उनको लगा कि वो गुप्त मिशन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, वो मोदी जी पूछते ना एक्स्ट्रा 2AB, चुनाव आयोग में एक्स्ट्रा 2AB, संधु जी और जोशी जी आ गए, वो एक्स्ट्रा 2AB ने गेम बिगाड़ दिया। सब कुछ सामने आ गया कि कैसे लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

पोर्टल आर्टरियल बाईपास, जिसके लिए अगर हम खोल के करते हैं उसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है. सो इफ आई वांट टू डू ए टोटल आर्टरियल बाईपास, इसको टोटल आर्टरियल बाईपास इसलिए कहते हैं कि दोनों आर्टरियल ग्राफ्ट निकालते हैं एंड रोबोट कैन सेफली टेक आउट बोथ द आर्टरीज, स्पेशली फॉर यंग पेशेंट्स जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है. सपोज नाउ देज इंडिया में इतना ज़्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे हैं यंग पेशेंट्स में, वी यूज टू समटाइम डू बाईपास एट द एज ऑफ 35, 38, 25. उन लोगों के लिए टोटल आर्टरियल ग्राफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन लोगों को रोबोटिक सर्जरी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी कैन टेक आउट बोथ द आर्टरीज विदाउट ओपनिंग द चेस्ट इफेक्टिवली एंड पुट देम इनटू टोटल आर्टरियल सर्जरी, सो दैट देयर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आर वेरी गुड.

0: the chief election commissioner should resign immediately. There are a number of political parties which have demanded the same thing. It's now clear that the chief election commissioner is acting as though he is the sole election commission. He is speaking for the election commission when the record shows that the two fellow election commissioners have disagreed.
1: राहुल गांधी को हर चीज में आपत्ति है, इलेक्शन कमीशन से आपत्ति है, ईवीएम से आपत्ति है, वोटर से आपत्ति है, नरेंद्र मोदी जी से आपत्ति है, एसआईआर से आपत्ति है। मुझे बताइए कि साफ स्वच्छ राजनीति जो अब चाहते हो, साफ स्वच्छ प्रजातंत्र चाहते हो, तो इलेक्टोरल रोल्स को क्लीन अप करने की आवश्यकता है या नहीं? जो बोगस वोटर्स हैं, जो लोग बाहर से आए हैं और वहाँ बैठे हैं वोट कर रहे हैं, उनको निकालने की आवश्यकता है या नहीं? घुसपैठ हैं या नहीं? ये सभी सवालों के ऊपर वो आत्मचिंतन करें तो उनको ये सभी सवालों का जवाब मिलेगा। एसआईआर सिर्फ अपने काम कर रहे हैं।

0: The India Alliance is very clear. Every single leader of the Alliance, every single party is in full agreement that what is going on is absolutely illegal. It is anti-constitutional. I strongly believe that the legal safeguards provided to the Election Commissioner, which were instituted by this government, by the BJP government, to protect him no matter what he does, those safeguards need to be removed. If anybody is committing illegal acts against this nation, against our constitution, against India, they need to be tried for the criminal actions that they are involved in. This is treason, and he needs to be tried for treason.
1: ऐसे में अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, खासतौर पे सीईसी की है कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें। देखिए, विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता है मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। विपक्ष का काम है राजनीति करना। आप अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे? पर ऐसे में विपक्ष को संतुष्ट कराने के लिए सीईसी को नहीं बल्कि जनता को विश्वास में लेने के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये। ऐसे में अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही लोगों का विश्वास या संदेह खड़ा हो जाएगा तो ये गलत है।

0: इसलिए कर रहे हैं उनके माता जी का जो वो 83 में भारत की नागरिकता ली और 80 में फोर्जरी करके वोट दिया और कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया उनके पिटीशन को, इसको डाइवर्ट करने के लिए ये चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं।
1: हम लोग सब लोग चाहते इस्तीफा होनी चाहिए उनकी और गिरफ्तारी होनी चाहिए, बल्कि ये तो अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है।

तो हमने इस पहले भी इस बात को जो है कहा था, राज बिहार भर के हर जिलों में राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन ये अभी बस शुरुआत है। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो लंबी लड़ाई होगी, अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे।

0: ये इसलिए कर रहे हैं उनके माता जी का जो वो 83 में भारत की नागरिकता ली और 80 में फोर्जरी करके वोट दिया और कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया उनके पिटीशन को, इसको डाइवर्ट करने के लिए ये चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं।
1: हम लोग सब लोग चाहते इस्तीफा होनी चाहिए उनकी और गिरफ्तारी होनी चाहिए, बल्कि ये तो अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो हमने इस पहले भी इस बात को जो है कहा था, राज्य बिहार भर के हर जिलों में राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन ये अभी बस शुरुआत है। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो लंबी लड़ाई होगी, अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
3: You are watching India Today.
4: Good afternoon, viewers. Welcome back. You're watching India Today with me, Sriya Kundu, and we will be following up on all the top stories with the latest developments of the hour. Let's begin the bulletin with focus on the headlines first. Politics speaks over the CEC row. BJP top gun slammed the opposition, accuses them of damaging constitutional institutions and undermining democratic values. Congress attacks the BJP and CEC, calls Modi government illegitimate. Former Kerala Chief Secretary G.G. Thompson alleges CEC Ganesh Kumar advised him to contest 2019 Lok Sabha polls on a BJP ticket in 2016 and that he rejected the offer. LOP Rahul Gandhi says CEC Ganesh Kumar is a recruit for the BJP and Prime Minister and Home Minister are umpires for the polls. BJP calls Thompson's claim fabricated. Protest by students of the lovely professional university over an unverified report of rape of a female student by an outsider on university campus turns violent. Protesters damage campus property, set objects on fire. Jalandhar Fagwara highway has now been blocked. Uproar over the mysterious death of 22-year-old Nimisha Thakuria in Guwahati. Cops detained one Asif Ali, who claims Nimisha hung herself from a ceiling fan. Nimisha's family, neighbours protest, demanding justice. BHP invokes love jihad in the case. External Affairs Minister S. Jaishankar's blunt message to Pakistan over their bizarre claim says serial practitioner of terrorism misrepresented facts to the UNGA and that ties in terrorism cannot go along. External Affairs Minister says perpetrators of terrorism must mend their ways in a strong-worded attack on Pakistan.
5: A serial practitioner of terrorism misrepresented facts before this assembly. Arguments were invoked to normalize terrorism and claim immunity from its consequences. That will not stand. Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised.
4: Starting the bulletin with our focus on breaking news coming in. This is a highly political drama that's now unfolded in the national capital. It's Delhi PWD Minister Parvesh Verma, who's lost his cool and then slapped when he arrived to inspect a road. He slapped a man in public is what we are learning. It's a youth, it's a young boy who was slapped while inspecting the road. The Aam Aadmi Party has alleged that he was facing allegations of road corruption and then slapped a youngster. Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal demands the minister's arrest. At this given point, these are the details, the preliminary details that we've found, and that exact moment when he lost his cool while inspecting the road and ended up proceeding to slap a young boy, as you can see in the video. This has all been caught on camera. Take a look at the exact sequence of events that played out right here in the national capital.
6: पकड़े जाने पर भाजपा के मंत्री परवेश वर्मा किस तरह बौखला गए और कैमरे से उनकी चोरी रिकॉर्ड करने वाले को थप्पड़ मार के गुंडों की तरह किस तरीके चोरों की तरह फरार हो गए, वो आज सब ऑन कैमरा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि जब ये वारदात हुई तो विकासपुरी थाने के एसएचओ यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी नहीं पकड़ा, उनको भगाने में मदद की उन्होंने, पर जब तक मंत्री परवेश वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनके ऊपर एफआईआर नहीं की जाती, हम यहाँ से नहीं हटेंगे।
4: Sushant Mehra joining me on the broadcast with more details on this very incident. Sushant, a very good afternoon to you. Sabse pehle, kya hua yahan pe exactly? Yahan pe jo camera pe jo sequence record hua hai, usme dikh raha hai ki Parvesh Verma kafi gusse mein lag rahe hain. Ek baatcheet, kisi tarike ka ek baatcheet hua in dono ke beech mein, jiske wajah se wo apna santulan kho baithe aur fir जाके थप्पड़ मार दिया इस बच्चे को, क्या हुआ एग्जैक्टली?
7: देखिए, प्रवेश वर्मा का ये पूरा कार्यक्रम तिलक नगर के अंदर था और तिलक नगर के जो विधायक हैं जरनेल सिंह, पिछले दो दिन से वहां पर जो रोड का कंस्ट्रक्शन का वर्क हुआ है उसको लेकर के सवाल जो है वो उठा रहे थे, लेकिन प्रवेश वर्मा आज उस सड़क का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। काफी भीड़ थी उस कार्यक्रम के दौरान। जो जानकारी मिल पाई है, जो सोर्सेस की तरफ से जानकारी मिल पाई है, उसमें जानकारी ये है कि जरनेल सिंह और उसके जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि लोकल विधायक है जरनेल सिंह वहां से, उनके कार्यकर्ता जो है वो लगातार प्रवेश वर्मा के आसपास घिरे हुए थे और राजनीति जो है उस पूरे मामले पर हो रही थी, प्रवेश वर्मा को घेरने की कोशिश जो है वो चल रही थी। इसी दौरान प्रवेश वर्मा ने जो अपना संतुलन जो है, अपना आपा जो है वो खोया। एक शख्स लगातार जो अभी जानकारी मिल पाई है इनिशियल स्टेज पर, उस पर यह है कि एक शख्स जिसके ऊपर ये मारा गया है चाटा, वो दरअसल वीडियो जो है वो बना रहा था और प्रवेश वर्मा इसी चक्कर में जो है वो काफी ज्यादा इरिटेट हुआ, जिसके बाद उनकी तरफ से उन्होंने अपना आपा जो है वो खोया और उस लड़के के जो है वो एक जो थप्पड़ है वो मारा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पार्टी भी जो है उस पूरे मामले पर संज्ञान जो है वो ले रही है, क्योंकि जब इस तरीके की घटनाएं होती है तो निश्चित तौर पर नेता अगर इस तरीके से पब्लिक प्लेस में इस तरह से होता है तो एक बड़ा मैटर जो है वो होता है और ऐसे में पार्टी की भी एक जिम्मेदारी बनती है। अब इस पार्टी पर देखना है कि दिल्ली में किस तरीके का स्टैंड जो है वो लिया जाता है, क्या प्रवेश वर्मा को लेकर के पार्टी कुछ रुख अख्तियार करती है इस मामले को लेकर के। हालांकि प्रवेश वर्मा की तरफ से और पार्टी की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन जो है उस पूरे मामले पर नहीं आया।
4: सुशांत, अगर हम ये पूरे इंसिडेंट की बात करें, अभी कोई जानकारी ऐसी मिली है कि हाँ, ऐसे बहुत बार होता है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ रिकॉर्ड होते हुए हम लोगों को दिखता है, कोई भी इंसिडेंट कहीं भी हो लोग फोन पहले निकाल के रिकॉर्ड जरूर करने लग जाते हैं। अब बात आती है प्राइवेसी की भी ऐसे सिचुएशंस में, और बहुत लोग ऐसे वार्निंग भी देते हैं कि प्लीज रिकॉर्ड मत कीजिए, तो ऐसा कोई मैसेज दिया गया था वहां के लोग जो इकट्ठे हुए थे, उनको पुलिस ने ऐसा कोई नोटिफाई किया था उन लोगों को कि अभी फिलहाल कोई रिकॉर्डिंग मत कीजिए, एंड उसके बाद ये जो यंग लड़का है उन्होंने नहीं सुना और उसके बावजूद रिकॉर्ड करते रहे, जिसके वजह से प्रवेश वर्मा ने ये कदम उठाया, ऐसी कोई जानकारी है?
7: देखिए, पर ये भी जानकारी जो है वो सामने आई, क्योंकि अक्सर इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं, आम पब्लिक में से कोई भी शख्स आकर के वीडियो जो है वो बनाने लगता है, अक्सर जब सीएम के या किसी मिनिस्टर्स के कार्यक्रम होते हैं तो इवेंट खत्म होने के बाद जो मुख्यमंत्री हो चाहे वो मंत्री हो, वो आकर के इवेंट के बाद अपना इंटरेक्शन जो है वो मीडिया के साथ करते हैं, और कई बार इस तरीके की घटनाएं भी सामने आई हैं कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के चलते कई लोगों ने उनके साथ भी इस तरीके के हमले जो है वो अरविंद केजरीवाल पर भी हुए। तो सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण कई बार आसपास के लोगों को वीडियो बनाने से और आसपास के लोगों को सामने आने से मिनिस्टर्स के रोका जाता है वीआईपी कल्चर के कारण। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर भी हो सकता है कि ये चेतावनी जो है वो बार बार दी जा रही हो कि आप इस तरीके से वीडियो जो है वो ना बनाएं, और हो सकता है कि उस व्यक्ति ने ये बात ना सुनी हो जिसके कारण ये पूरा हंगामा जो है वो क्रिएट हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जो है वो चल रही है। आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर सरकार के ऊपर हमलावर है, पुलिस स्टेशन के में लगातार एफआईआर की मांग जो है वो की जा रही है प्रवेश वर्मा को लेकर के।
4: जी बिल्कुल व्यूअर्स, दिस इज सुशांत, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल व्यूअर्स, टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड हियर, देयर वाज अ सर्टेन इंस्पेक्शन दैट वाज अंडर वे ऑन दिस रोड इन तिलक नगर, एंड इट्स बिन इन क्वेश्चन एंड स्पेक्युलेशन फॉर सम टाइम। इट्स सीन सर्टेन कंप्लेंट्स बीइंग मेड, एंड व्हिच इज व्हाई द पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैड रीच्ड दिस वेरी एरिया टू सी व्हाट एग्जैक्टली इज दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स एज हैज बीन ब्रॉट अप बाय द रेसिडेंट्स अराउंड दिस एरिया। But in the very process, we see in a short interaction and exchange with the people there, he tried conveying the message that nobody record him per se. There are media interactions that take place later on. But then there is this one boy who seems to have not heard him, and he got in the way recording the very minister, which is why he seems to have lost his cool. But at the end of the day, whatever said and done, slapping somebody is not the right way to handle a situation. You can warn them, you can in fact warn them of action to be taken against them simply because you've asked them not to click their videos, not to record something. That there is an entire concept and conversation about privacy there. But the heated exchange here that happens, that is uncalled for at the end of the day, be it on the part of somebody who's in a position of power. In this case, it's the Delhi minister, Parvesh Verma, or even for the boy, because if you see even in his demeanor and even in his gestures, you can see that he's also quite angered at this given point. So yes, it's a heated exchange that did take place between the two. And in that heat of the moment, we do see this entire situation having taken place. But we do condemn it because we have reported on such incidents in the past where people in a position of certain responsibility and power have lost their cool and, in fact, proceeded to show and engage such behavior. And that will any day, in any circumstance, be unacceptable. And this is another such example that we are bringing to you. Now, India Today, we have some more breaking news. Let's quickly take a look as to what we are learning. India Today speaks to the youth who was slapped by Parvesh Verma. The victim says when he and the Aam Aadmi Party MLA were pointing out the condition of the road, Parvesh Verma lost his cool and slapped him. He sought action against the minister, saying an FIR has been lodged. Let's quickly listen in to what exactly has been said.
8: इनकी पीडब्ल्यूडी के दबाव से फोन आया था मिनिस्टर जी का ही सर को, तो यहाँ पे देखने के लिए आए थे, उन्हें दिखाने आए थे ये रोड की क्या हालत है। उन्हें दिखाया कि हाथ कैसे रोड उखड़ रही है, सर ने दिखाया तो उनसे वो चीज़ झेली नहीं गई। उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया, उनके जो साथी थे उन्होंने धमकी दी है मुझे जान से मारने की। तीन से चार जब लोग थे उन्होंने मारा भी, हाथ भी उठाया, उसमें पुलिस भी यहाँ पर थी, उनके सामने ये सब हुआ। वो लिखित रूप में माफी मांगे और उनपे जो बनती कार्रवाई है वो सस्पेंड करना बनता है, भाजपा इस पे एक्शन ले अगर वो सच के साथ है तो एक्शन ले, क्योंकि इस पे तो वीडियोस आई हैं, हम कुछ अपनी तरफ से तो बोल नहीं रहे हैं, सब चीज की वीडियो है, तो एक्शन हो।
4: So what the victim has to say is that at this given point that they were trying to raise certain complaints. So there are two narratives to this story. While Parvesh Verma's side of it, or rather the news that we have received from that side, is that he was trying to record him without his permission. At the same time, the victim has to say that they were just trying to raise complaints, and that was not taken well by the minister and his team who was visiting that very location. Sushant is back with us on the broadcast. Sushant, jo victim se victim ka jo bayan aaya hai wo keh rahe hain ki unhone sirf problems raise kiye the unke samne Parvesh Verma ke samne ki exactly dikkat kya hai un logo ko जो यहाँ की लोकेलिटी में रहते हैं इस रोड को लेकर, पर उसमें ही परवेश वर्मा अपना संतुलन खो बैठे और उन्होंने ऐसे थप्पड़ मार दिया।
7: देखिए, जो जानकारी मिल रही है जिस तरीके से व्यक्ति में उसने अपना बयान सामने रखा है, निश्चित तौर पर ये जो पूरी घटना है बहुत ही ऐसी घटना है कि इस तरीके से अगर दिल्ली की सड़कों पर अगर नेता अपना आपा खोते हैं तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक है सवाल उठने तय हैं। लेकिन जो बात सामने ये भी आ रही है कि लगातार वो जो शख्स है वो वीडियो जो है वो बना रहा था, जिसको लेकर के प्रवेश वर्मा की टीम की तरफ से लगातार ये मना भी किया जा रहा था कि इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड ना करें, सवाल जवाब ना करें, क्योंकि अक्सर इस तरीके के कार्यक्रम के बाद मीडिया को भी बातचीत जो है वो करने की इजाजत जो है वो बाद में होती है सवाल जवाब की। लेकिन उस कार्यक्रम में निरीक्षण के दौरान उनसे सवाल जो है वो बार बार किया जा रहा था, जिसके बाद प्रवेश वर्मा ने अपना आपा जो है वो खोया और उस शख्स को जो है वो थप्पड़ जो है वो मारा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को पर बीजेपी को घेर रही है। प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR की मांग जो है वो बीजेपी की तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी प्रवेश वर्मा की तरफ से कोई बयान जो है वो साफ तौर पर अभी सामने नहीं आया है, पार्टी की तरफ से भी कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर अब पार्टी जो है वो कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर लेगी, क्योंकि ये इस तरीके का जो मामला है ये पहला मामला है। मंत्री होने के नाते वो तिलक नगर के में दौरा करने के लिए पहुंचे थे, सड़क का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। पिछले 2 से 3 दिन से लगातार जरनेल सिंह जो कि तिलक नगर से विधायक है वो लगातार एक वीडियो डाल रहे थे, क्योंकि वहां पे सड़क का निर्माण हुआ था और सड़क की थिकनेस को लेकर के लगातार ये सवाल जो है वो उठाए जा रहे थे, जिसके बाद परवेश वर्मा जो है वो तमाम इंजीनियर्स और PWD के अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने पहुंचे थे, तभी लोगों ने जो है वो घेरा। लेकिन फिलहाल अभी जो जानकारी आई है कि उनमें से कई लोग ऐसे भी थे, क्योंकि स्थानीय विधायक जो है वो भी सुनने में आ रहा है कि वहां पर मौजूद थे और पार्टी के, आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता जो है वहां पर मौजूद थे। तो जो झड़प हुई और जो इसके बीच में हुई ये देखना है।
4: जी बिल्कुल सुशांत, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद, हम आपके पास आते रहेंगे अपडेट्स के लिए। बट व्यूअर्स, दिस इज द एंटायर केस दैट्स हैपेंड सो फार दैट वी हैव अंडरस्टूड बोथ साइड्स of the story that we are presenting. Again, we still are waiting an official statement from both the party as well as Parvesh Verma as to what is his side of it. But the details that we have gotten so far, one side has to say that this particular person, this young boy, was trying to record without permission, while the victim himself, the young boy himself, has to say that they were just merely flagging issues that this road faces and the residents have to go through. And Parvesh Verma did not take that well and in a fit of rage, in the heat of the moment, proceeded to slap him. Now, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra has hit out at the BJP and the CEC Gyanesh Kumar over the former Kerala Chief Secretary's allegations that Gyanesh Kumar offered him a BJP ticket. Priyanka says Gyanesh Kumar must resign as a CEC for his illegal and unconstitutional act. This is what we are learning now. Remember, yesterday itself, we brought to you this very story, this news about how it's a former Kerala Chief Secretary who's come out to make these claims that in 2016 is when Gyanesh Kumar had made this offer of fighting the Lok Sabha polls of 2019. Via a BJP ticket, which he now claims he had in fact rejected that very offer. And this has only added to the existing debate and the entire row, the SIR row, from a media report on the entire election commission rift. So there is only this entire matter now escalating. There is no signs of it dying out at all. Let's listen in first to what Priyanka Gandhi has said this time.
9: It's completely, completely illegal and unethical. Completely unethical. And it shows that these people who are supposed to and who are at the highest level of our election system and the institutions that run our elections, they have party leanings. Not only they have party leanings, but they are actively propagating those parties. How can they run fair elections? It's one in a series of things that this gentleman has done, which are completely illegal and unconstitutional. And he needs to resign. And he needs to resign now.
10: On that note, we have Shibi Mol KG joining us on the broadcast with more details on the same. Shibi Mol, a very good afternoon to you. We were speaking of the latest flashpoint in the entire issue surrounding the CEC, Ganesh Kumar. Several allegations coming to the forefront. Demands, of course, continue to be for his resignation from the opposition parties. But this very episode that's now been flagged by a former Keralam Chief Secretary has only made matters more escalated. Priyanka Gandhi has had earlier spoken about the issue. Now she's attacked the government as well as Ganesh Kumar over this matter as well.
11: Well, exactly. In fact, the revelation from Gigi Thompson, the former Chief Secretary of Kerala, is coming right at the time Ganesh Kumar is facing severe allegations and protests from the opposition parties. Gigi Thompson goes on to say that he was advised by Ganesh Kumar to contest for the Lok Sabha elections in 2019. And this took place almost 10 years ago when he was appearing, when he was nearing his retirement, when, on a flight, Gigi Thompson was advised by Ganesh Kumar to, contest for BJP, win the election, become an MP and then become a minister. So the question the opposition parties here are raising is that people holding positions at a higher level are having political leanings, and then of course as individuals everybody will have political leanings, but they're propagating it, they're trying to recruit people for a political party, which is wrong and which is concerning, is what the opposition party says. The Congress has took over this statement, this revelation made by Gigi Thompson very seriously, with yesterday Rahul Gandhi tweeting about it and saying that this is just one example and this is how the Chief Election Commissioner has been functioning for many years. Remember, Ganesh Kumar had a very long stint in Kerala also, professional work-wise. And now Priyanka Gandhi also saying that the same thing, echoing the statement of Rahul Gandhi and saying that people holding higher positions, having political leanings and propagating those political leanings is concerning, and that should be that should be stopped, and that is the main issue that we will be raising. She also goes on to say that we will take all protests. The protests have already begun. In the coming weeks, the protests will be strengthened until the Chief Election Commissioner steps down in the background of all these allegations.
10: Right, Shibi Mol, thank you for bringing us all of those details. Viewers, let's take you through what's happened so far in this very story, in this latest flashpoint that's come about in the bigger debate that was already underway demanding Ganesh Kumar's resignation over the EC rift allegations that had come in on that media report. It's a decade-old alleged conversation that's now come under the spotlight and has snowballed into a major political battle over the Election Commission. The former Kerala Chief Secretary, Gigi Thompson, has alleged that Ganesh Kumar, during a flight to Delhi in 2016, advised him to contest the 2019 Lok Sabha elections on a BJP ticket. An allegation, Thompson says, he rejected the offer of. The claim has triggered a fierce political showdown. Rahul Gandhi himself has launched a scathing attack, alleging that Ganesh Kumar used to recruit for BJP and accusing the Prime Minister and Home Minister of making him the umpire for elections. On that note, even Priyanka Gandhi has now added to the tirade and launched an attack, which we just took you through the details of. Congress has questioned the CEC's neutrality, but the BJP has not stepped down as well. They have also hit back hard, asking why Thompson remained silent for nearly a decade and why he has spoken up now. The BJP has questioned Thompson's credibility and called his claim fabricated. On that note, earlier, my colleague Suyasha Savan spoke to the BJP spokesperson R.P. Singh, who questioned Gigi Thompson's timing and raised doubts over his allegations. Let's listen in to what he has to say.
12: With the Congress levelling these allegations, what do you have to say?
0: Well, Mr. Ganesh Kumar will have to answer that, but this is related to 2016. Why does the man wake up after 10 years? When there is something more than what he's saying. But he's referring to some flight he took with Mr. Ganesh Kumar in 2016, and all these years he kept quiet. It means there is something more. I mean, probably he is on Congress payroll or something like that. I mean, I'm not very sure, but something of that sort probably is there. Or otherwise, why will a man wake up after a decade, complete 10 years? But again, Mr. Ganesh Kumar will have to answer that. I'm not the spokesman of Mr. Ganesh Kumar. But as I see as a political man, as a political analyst, that this is a complete fabrication, or someone has told him to do so,
13: because 10 years is a big period to someone to come in public about something which has happened 10 years ago.
10: On that note, viewers, those are the developments we had for you for this very hour. But do stay tuned to India Today as we are wrapping up the bulletin right here. But we will keep tracking all of the top developments for you on the other side. Thank you for watching.
14: You are watching India Today.

0: Politics speaks over CEC row. BJP top gun slam opposition, accuses them of damaging constitutional institutions and undermining the democratic values. Congress attacks BJP and CEC, calls Modi government illegitimate. Former Kerala Chief Secretary G.G. Thompson alleges CEC Gyanesh Kumar advised him to contest 2019 Lok Sabha polls on a BJP ticket in 2016 and that he rejected the offer. Leader of Opposition Rahul Gandhi now says CEC Gyanesh Kumar is a recruit for the BJP and an umpire appointed by Prime Minister and Home Minister for the polls. BJP calls Thompson's claims fabricated. Uproar over a mysterious death of 22-year-old Nimisha Thakuria. In Guwahati, cops detained one Asif Ali, who claims Nimisha hung herself from a ceiling fan. Nimisha's family, neighbours protest demanding justice. VHP, meanwhile, invokes love jihad in the case. External Affairs Minister S. Jaishankar's blunt message to Pakistan over its bizarre claims, says serial practitioner of terrorism misrepresented facts to UNG and that ties and terrorism cannot go along. External Affairs Minister says perpetrator of terrorism must mend its way in a strong worded attack on Pakistan.
1: A serial practitioner of terrorism misrepresented facts before this assembly. Arguments were invoked to normalize terrorism and claim immunity from its consequences. That will not stand. Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised.
0: On that note, viewers, we are starting the bulletin with our focus on the Slapgate incident that we have brought to you a little while back. Aam Aadmi Party now upping the ante against Delhi Minister Parvesh Verma over the Slapgate. Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal releases a video message saying BJP ministers are behaving like goons in front of the Aam Aadmi. Kejriwal says he will visit Tilak Nagar tomorrow himself and inspect the road over which the Delhi minister slapped the very youth. This is what we are learning at this given point. First, listen into what Arvind Kejriwal has said.
2: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई. सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी. जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा. मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते. मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद जाऊंगा.
0: अनमोल बाली जॉइन्स अस ऑन द ब्रॉडकास्ट विद मोर डिटेल्स ऑन दिस वेरी स्टोरी. अनमोल, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. दिस इज द लेटेस्ट दैट वी आर नाउ लर्निंग इन द स्टोरी. नाउ it's expected politics will snowball over this entire issue. Arvind Kejriwal making some serious allegations with regards to the safety of the common people out there. At the end of the day, whatever happened in that entire heated exchange, a person in a position of power and responsibility slapping a civilian out there will always be questioned and looked at in bad light.
3: Shreya, we have seen in the video that Minister Parvesh Verma loses his cool and slaps a young man while he was in Delhi's West Delhi's Tilak Nagar. He was inspecting a road and there we have seen the local MLA, Jarnail Singh, reach there. He inquired and complained about the condition of the weak construction of the road on that time. The young guy was filming the video who's saying that he works for Tilak Nagar MLA, Jarnail Singh social media team. And we have seen that in video that how Parvesh Verma has slapped the young guy and after that all Aam Aadmi Party leaders have started tweeting, and they are clearly saying that they will be lodging an FIR against Pravesh Verma, and they're demanding justice for the young guy who has been slapped by the minister Pravesh Verma. But we are still waiting for the Pravesh Verma's reaction on this incident. But the video is going viral on the social media. We have also seen that AAP Supremo Arvind Kejriwal has also uploaded a video on the social media attacking CM Rekha Gupta, Minister Pravesh Verma and the BJP government, where he clearly said that he will be going tomorrow Tilak Nagar. He'll be meeting the guy and he will be inspecting the same road where this incident took place, where the whole incident unfolded today. Shreya.
0: Right. Right, Anmol. Do stay back with us. As we said, this is a story that will definitely snowball politically speaking. There are more reactions coming in. There are more opposition parties also speaking at this given point on the same. Let's quickly take a look as to what are we learning. Now, after the Aam Aadmi Party, there is more reactions coming in. It is the Congress who's hit out at Pravesh Verma over the slap gate. Congress posts and says, and I quote, a BJP slap for a citizen. A young man asked Delhi government minister Pravesh Verma question about the poor condition of roads. That was all it took. The minister flew into a fit of rage and slapped the young man. This is the true face of the BJP. Leaders and ministers intoxicated by the arrogance of power view themselves as kings while regarding the public as a mere insect. People may die amidst their game of corruption and kickbacks, but they must not ask questions. Dare to ask and you will get beaten up. The BJP should remember this. The public forgets nothing and will certainly shatter their arrogance. This is what the Congress has now come out to say. Anmol continues to stay with us. Anmol, opposition parties are amping up the attack. But, you know, while I'll request you to put this very comment or remark that's coming from the Congress into further light and perspective, one aspect stays, that is the timing of this entire incident. You know, it's quite unfortunate because on one hand, we see for the last couple of weeks now, the BJP has been strategizing to reach out to the young members of the society out there. The Gen Z outreach that we've been seeing, all leaders have been asked to be on board. And then an incident of this kind happens where there's a young boy who's slapped by one of their leaders, one of their ministers, in fact, for that matter. How does that play out? How is this factored in and how does the party then react to this? All of that will now come under the spotlight.
3: Shreya, as you know, in the last many days, we have seen that even PM Modi has launched various outreach initiatives. He has reached SRCC College, he went to IIT Delhi. Even we have seen Dusu elections took place, where we have seen that how BJP and Congress both are trying to lure the young voters, the Gen Z, amid this. This video has further ignited the politics in the national capital, where opposition parties like Aam Aadmi Party, the principal opposition party in the national capital, and the Congress party has now sharpened their attack against the Bharatiya Janata Party, because they're bringing the Gen Z angle in it, because in the video we have seen that how a young guy who was trying to film the minister was trying to film how the confrontation between the minister and the MLA Tilak Nagar, while he was asking questions to Minister Pravesh Verma about the weak condition of the road, about the weak construction of the road. And amid this, we have seen that how minister loses his call and slaps the young guy on the camera, and the video is now going viral on the social media. And both opposition parties, Congress and Aam Aadmi Party, are now targeting the BJP over this issue. But on the other hand, we are still waiting for the BJP's reaction and Minister Pravesh Verma's reaction on this incident. Shreya.
0: Absolutely. Anmol, thank you for filling us in with those details. We will, of course, be keeping a very close watch on the developments taking place. But viewers, let's quickly take you through this entire incident at first. What exactly happened in Tilak Nagar today? It's a massive political firestorm erupted in Delhi just a little while back. In the eye of the storm is the Delhi minister, the PWD minister to be specific, Pravesh Verma, who was seen slapping a youth in this video. Verma was at the spot to inspect the road condition when the incident took place, and he was seen pushing down a man holding a phone and then proceeds to slap him. The victim, a youth named Sahib Singh, has come out to claim he confronted Verma over the deteriorating road surface and alleged the minister slapped him while he was recording the very interaction. Singh also alleges that Verma's associates threatened him while police personnel were present at the spot. Aam Aadmi Party MLA Jarnail Singh is demanding Verma's arrest over the same and legal action to be taken against him, accusing the minister of losing his temper when the road condition was highlighted. Aam Aadmi Party has also stepped up its attack, calling it an act of thuggery and saying that BJP has not realised the power of Gen Z, claiming that Verma is a goon who resorted to violence when his corruption was exposed. Take a look at the reactions, in fact, especially from the victim himself, and what he has come out to give his side, an account of the entire incident, that is.
4: हम यहाँ पर आए थे इनकी पीडब्ल्यूडी के जवाब से फोन आया था मिनिस्टर जी का ही सर को तो यहाँ पे देखने के लिए आए थे दिखाने आए थे कि रोड की क्या हालत है उन्हें दिखाया कि हाथ कैसे रोड उखड़ रही है सर ने दिखाया तो उनसे वो चीज झेली नहीं गई उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया उनके जो साथी थे उन्होंने धमकी दी है मुझे जान से मारने की तीन से चार जब लोग थे उन्होंने मारा भी हाथ भी उठाया उसमें पुलिस भी यहाँ पर थी उनके सामने ये सब हुआ वो लिखित रूप में माफी मांगे और उनपे जो बनती कार्रवाई है वो सस्पेंड करना बनता है भाजपा इस पे एक्शन ले अगर वो सच के साथ है तो एक्शन ले क्योंकि इस पे तो वीडियोज आई हैं हम कुछ अपनी तरफ से बोल नहीं रहे हैं सब की वीडियो है एक्शन हो
0: Now, viewers, what we are learning right now is the very reaction we'd been awaiting for. Parvesh Verma himself has, in fact, come out to speak on the entire incident. He's posted a video message saying, listen in to the entire truth and understand what happened. But yes, even then, at the end of the day, what happened should not have. That's the exact message that he's posted along with a video message. He's also gone ahead to say an Aam Aadmi Party is trying to spread fake news on what happened. Listen in to what Parvesh Verma has said.
5: एक वीडियो जो आज चल रहा है आम आदमी पार्टी वाले चला रहे हैं उसके पीछे की सच्चाई जान लीजिए विकासपुरी रिंग रोड के ऊपर में पिछले कई दिनों से रोड बनाने का काम चल रहा है वहां के विधायक जर्नेल सिंह द्वारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को कि हमको कॉन्ट्रेक्टर से मिलाइए और उनसे कमीशन दिलवाइए ये वो काफी दिन से उनको बोल रहे थे हमारे इंजीनियर ने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दी है उनके ऊपर में FIR करा रहे हैं और इसी के चलते जब उनको कोई कमीशन नहीं मिली जर्नेल सिंह को तो वो जैसे ही रात को रोड डलती थी वो सुबह जाके उसको उखाड़ने का काम करके और ये पूरा करप्शन हो रहा है इसका वीडियो बना के डाल रहे थे आज जब मैं उस रास्ते से निकल रहा था तो मैंने इंजीनियर्स को बोला कि एक बार मैं सारे काम को देखना चाहता हूं जब मैं वहां पे रुका और मैंने काम को देखा कि काम एकदम बहुत अच्छे से चल रहा है वहां के लोगों ने मुझे बताया कि 15 साल तक ये रोड नहीं बनी 15 साल के बाद में रोड बनाया जा रहा है शायद इस बात से आम आदमी पार्टी पूरी दुखी है कि दिल्ली में सारी सड़कें बनाई जा रही हैं 15 साल तक जो सड़कें नहीं बनी थी मैंने खुद वहां के विधायक जर्नेल सिंह को 3 बार फोन किया
6: जी जर्नेल जी
7: जी परेश भाई क्या हाल
6: चाल बढ़िया आप कहाँ पर हो
7: मैं तिलकनगर में हूँ
6: अच्छा एक बार यहाँ पे आओ जहाँ पे वीडियो बना रहे थे आप
8: कहाँ रहे थे सर
5: मैंने उनका 45 मिनट तक वेट किया हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया जब वहां पे जर्नेल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप जो काम नहीं कर पाए आज वो हमारी सरकार कर रही है इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है मगर अगर कोई भी मेरे परिवार को कुछ बोलेगा या हमारे कार्यों के ऊपर में हमने थर्ड पार्टी ऑडिट उसका कोर कटिंग का रिपोर्ट ये सब हम कराएंगे मगर अगर कोई सरकारी कार्य को बाधा डालेगा सरकारी कामों में हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा और हमारे अधिकारियों से कमीशन मांगेगा आम आदमी पार्टी का विधायक तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा तो ये आज की पूरी घटना की सच्चाई है जो मैंने आपके सामने रखी है एक वीडियो जो
0: So this is what Parvesh Verma has to say. Let's take you through breaking down the points of what exactly has been mentioned by him. Number one, he says that work was underway on this very road in Vikaspuri near Tilaknagar. And he says that this area is under the jurisdiction of Jarnail Singh. This is the same Jarnail Singh, remember, who has come out to demand Parvesh Verma's arrest and legal action be taken against him for slapping this young man. Now, Parvesh Verma has to say that Jarnail Singh was disrupting the work that was being done on the road. He was demanding for commissions from the engineers who were working and not allowing the work to proceed. While that was happening, Parvesh Verma himself decided to take cognizance of the entire situation and had called Jarnail Singh to meet him at this very spot. When Jarnail Singh finally came in with certain party workers who were abusing Parvesh Verma and his family members. And that's when he ended up, in response, slapping one of these young boys. This is his version of the entire story having played out. Sushant Mehra joining me on the broadcast with more details. Sushant, humne abhi abhi Parvesh Verma ka bayan suna hai is pure incident pe. Pehli baat to unhone kafi serious allegations lagayi hain. उनका ये कहना है कि जर्नैल सिंह इस रोड को बिल्ड नहीं करने दे रहे थे. जो भी काम पूरे दिन में हो रहा था वो शाम को आके, रात को आके रास्ते को उखाड़ के वापस चले जाते थे और ऐसे फॉल्स वीडियोस बनाते थे और लोगों को बताते थे कि इस रास्ते पे काम नहीं हो रहा है. और उन्होंने ये भी दिखाया कि उन्होंने जर्नैल सिंह को कॉल किया था, उनको बुलाया था, वो काफी लेट से पहुंचे. जब पहुंचे तो पार्टी वर्कर्स के साथ पहुंचे जो उनको अब्यूज करने लगे थे, परवेश वर्मा को अब्यूज करने लगे थे, उनकी फैमिली मेंबर्स को अब्यूज करने लगे थे. उसी के रिएक्शन में, हीट ऑफ द मोमेंट में, उन्होंने इस यंग लड़के को थप्पड़ मार दिया. पर वो ये भी कहते हैं कि जो हुआ था नहीं होना चाहिए था, पर वो हीट ऑफ द मोमेंट में उनका रिएक्शन था. आपको क्या पता चल रहा है?
9: देखिए, परवेश वर्मा ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर जो है वो पोस्ट किया है और उसमें
0: We'll get that connection reworked with Sushant. But yes, viewers, as you can make out the story right now, or at least the remarks coming in from Parvesh Verma. Remember, the victim had come out to say that he had just raised the issues about the road. And that's when Parvesh Verma lost his cool and slapped him. Sushant Mehra is back with us. Sushant, please continue. Kare.
9: देखिए, परवेश वर्मा ने जिस तरीके से एलिगेशन लगाया है, एक वीडियो उन्होंने वायरल जो है वो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और उस वीडियो के साथ दो पोस्ट जो है और अटैच किए हैं जिसमें साफ तौर पर वो जर्नैल सिंह को फोन कर उस लोकेशन पर बुला रहे हैं जहां पर ये पूरा वीडियो दो दिन पहले जो जर्नैल सिंह लगातार अपलोड कर रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी सरकार जो है वो जो रोड बना रही है उसमें करप्शन है. परवेश वर्मा की तरफ से साफ एलिगेशन लगाया गया है कि जर्नैल सिंह जो कि तिलक नगर की तरफ से विधायक है वो लगातार पीडब्ल्यूडी के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको कहीं ना कहीं अप्रोच कर रहे थे ब्राइब के लिए, उनसे कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो हिस्सेदारी कहीं ना कहीं मांग रहे थे. ये बिग एलिगेशन जो है वो परवेश वर्मा की तरफ से जो है वो लगाया गया है. इसको लेकर के शिकायत भी जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से उनका कहना है कि वो पुलिस स्टेशन में दी गई है. लेकिन ये पूरा मामला उनका तब तो ये कहना है कि जर्नैल सिंह को जब उस लोकेशन पर बुलाया गया जहां पर वो लगातार दो दिन से अपना वीडियो जो है वो अपलोड कर रहे थे लेकिन उन्होंने साफ तौर पर आने से इनकार किया. लेकिन उसके बाद जब वो वहां पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने उनके साथ इस तरीके से मिसबिहेव करना शुरू करा, उनका वीडियो बनाना शुरू करा जिस पर परवेश वर्मा ने अपना आपा जो है वो खोया. उस लड़के के ऊपर जो है वो लड़का भी जो है वो वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो वीडियो जो है वो बना रहा है. परवेश वर्मा ने उसको रोका जिस पर उस पर परवेश वर्मा की तरफ से एक एक्शन जो है वो सामने नजर आया और उनका ये भी कहना है कि जो एक्शन उन्होंने लिया है दरअसल परवेश वर्मा और उनके परिवार को लेकर के अब्यूज जो है वो वहां पर किया जा रहा था जिसके बाद उन्होंने अपना रिएक्शन जो है वो ये दिया. स्वाभाविक तौर पर उनका कहना है कि जब इस तरीके की कुछ चीजें होती है तो एक आम इंसान जब ये करता है वैसे ही हमने जो है वो रिएक्ट किया. यही वजह है जिसको लेकर के अब परवेश वर्मा का वीडियो जो है वो वायरल हुआ है, सामने आया है. वीडियो पर अब उन्होंने अपना जो कोट जो है वो सामने रखा है मीडिया के सामने कि किस तरीके से पूरी घटना हुई. सिर्फ एक तरफा नहीं कि उस लड़के के ऊपर जो है वो थप्पड़ मारा गया हो लेकिन उस थप्पड़ मारने के पीछे की पूरी कहानी क्या थी, किस तरीके से वो आम आदमी पार्टी से वो लड़का जो है वो जुड़ा हुआ था, लगातार वो वीडियोस बना रहा था, वीडियो को बार बार मना करने के लिए बावजूद वो वीडियो जो बना रहा था जिसके बाद अब्यूज जो है वो परवेश वर्मा को किया गया जिसके बाद ये एक्शन जो है वो लिया.
0: सुशांत, ये जो एंटायर सीक्वेंस ऑफ इवेंट प्ले आउट हुआ है, विक्टिम ने एक साइड बताया अपना, परवेश वर्मा की तरफ से एक बयान आया है कि एग्जैक्टली क्या हुआ, पर एट द एंड ऑफ द डे दो चीजें हुई है। एक जो हमको सामने से दिख रही है वो ये कि परवेश वर्मा ने एक यंग लड़के को थप्पड़ मारा, वो गलत है। दूसरा जो परवेश वर्मा ने खुद फ्लैग किया है कि एक मेंबर, आम आदमी पार्टी के जो मेंबर हैं, वो काम करने नहीं दे रहे थे इस रास्ते पे, ये काफी सीरियस एलिगेशन है। सिर्फ करप्शन का एलिगेशन नहीं, पर ये भी कि जो काम बना बनाया बन रहा है उसको भी उखाड़ के वापस होने नहीं दे रहे। 15 साल तक क्या हुआ है उसको अगर हम ना भी देखें, अभी की बात करें तो भी काफी सीरियस एलिगेशंस हैं। इसको लेके क्या करेंगे अब बीजेपी, वो भी देखना बाकी है।
9: देखिए, पहले जब ये वीडियो वायरल हुआ तो निश्चित तौर पर ये सवाल खड़े हुए कि आखिरकार किस तरीके से जो मंत्री हैं वो एक लड़के को जो है वो यंग लड़के को थप्पड़ मारते हुए नजर आते हैं। स्वाभाविक तौर पर जब ये पूरा रिएक्शन होता है तो चाहे किसी भी किस सिचुएशन में हो, नेता को अपना आपा जो है वो नहीं खोना होता है। लेकिन उसके बाद जब ये सफाई जो है वो दी गई परवेश वर्मा की तरफ से कि 15 साल से विकासपुरी का जो रोड है वो नहीं बना था, पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार वो लगभग 10 साल रही, उस दौरान भी ये रोड जो है वो नहीं बनी, इसके पीछे आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं कमियां थी। और आज जब ये रोड बनने पर आया तो उस पर भी अब सवाल खड़े होते हुए आम आदमी पार्टी जो है वो नजर आ रही थी। यही वजह है जिसको लेकर के जरनैल सिंह लगातार अपना वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर डाल रहे थे, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से लगातार वो ब्राइब मांग रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर से वो ब्राइब मांग रहे थे, जिसके कारण परवेश वर्मा ने जब ये वीडियो जरनैल सिंह का लगातार देखा कि किस तरीके से देर रात के वक्त जब रोड बन रहा होता था तो उसको उखाड़ देते थे, अगले दिन जो है वो वीडियो बनाते थे और बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। अब उसी मामले पर जो है वो परवेश वर्मा ने अपना रिएक्शन जो है वो सामने दिया है। उन्होंने साफ तौर पर ये एलिगेशन जो है वो लगाए हैं, खुद जो पोस्ट किया है एक्स में उसमें दो वीडियो भी अटैच करे हैं और स्पीकर पर उन्होंने बात करते हुए जरनैल सिंह के साथ वो नजर भी आ रहे हैं, जिसमें वो ये साफ बता रहे हैं कि जरनैल सिंह जी बताइए कि कहाँ आना है, मैं उस स्पॉट पर हूँ जहां पर आप वीडियो बना रहे थे, ताकि उसकी जांच की जाए, अगर इस तरीके से कोई कमी पाई जाती है तो चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो उस पर कार्रवाई हो। तो यही वजह थी कि परवेश वर्मा का ये भी कहना है कि वो 45 मिनट तक वहां पर खड़े रहे, जरनैल सिंह नहीं आए, और जब आए तो इस तरीके से कार्यकर्ताओं को लेकर के आए, वीडियोज बनाने लगे, अब्यूज करने लगे उनके कार्यकर्ता, जिसके बाद परवेश वर्मा ने अपना रिएक्ट जो है वो किया।
0: जी सुशांत, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, दिस इज वेयर इट ऑल स्टैंड्स, वन इंसिडेंट नाउ ब्रिंगिंग फॉरवर्ड मोर एलिगेशंस ऑफ करप्शन ऑफ ब्राइबरी दैट हैज बीन अंडरवे। अगेन एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशंस कंटिन्यू, वी विल कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल ऑफ दीज डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस, बट फॉर नाउ वी आर शिफ्टिंग आवर फोकस टू अनदर स्टोरी। Heading towards the end of the bulletin, we will leave you with this certain report on a story that we've been tracking. Violence and arson rocked lovely professional university in Punjab's Fagwara after students took to the streets over unverified allegations of sexual assault. Students vandalized university property and blocked the Jalandhar Fagwara highway. However, LPU has rejected the allegations as false information. Here's a comprehensive report bringing you all the details at the end of this very bulletin. Take a look and thank you for watching. Violence, vandalism, arson. High drama unfolded at Punjab's lovely professional university at its Fagwara campus. Hundreds of students gathered near the girls' hostel after midnight and unleashed total mayhem over an unverified report of rape.
10: There you can see the impact of that sort of violence and arson which took place. This is the mall inside the LPU where students come for entertainment, for eating. And there what you can see is the sort of damage which has been done, and extensive damage has been done, not just the eatery, but there are glass shattered all across, a whole lot of damage. But the allegations seem really serious.
0: Property was damaged and Jalandhar Fagwara National Highway was blocked by angry students. Total chaos unfolded after students alleged that a girl from G3 hostel was sexually assaulted 3 days ago by a construction worker and that no action had been taken. Some claims also alleged a suicide by the girl after the alleged rape.
11: They are alleging there have been instances of rape and suicide, something that the LPU has denied. They've issued a statement calling them fake news.
12: अरे हमें पूरी clear information नहीं मिली, but हमको जहाँ तक पता कि हमारे hostel में कोई एक hostel में वहाँ पे rape case हुआ है, कोई worker नहीं किया. हमारे parents को, हमारे जो brother और father को थे, वो अंदर नहीं आने देते.
0: Police says the claims remain unverified and no corroborating evidence of the crime has been found so far.
13: We have registered the FIR and SIT has been formed. At the same time, we are also taking the 3 to 5 representatives of students who will investigate with us.
0: However, students maintain there is a cover-up by the university administration.
14: Cover-up kiya ja raha hai LPU ki taraf se, kyunki ye incident hua hai. FIR भी हो चुकी है, सारे भी वीडियो प्रूफ है हमारे पास जो हमने डीआईजी सर को दिखा दिया.
0: While talks got underway between the students and the university administration, the situation continues to remain tense. Lovely Professional University has rejected the allegation, saying anti-social elements were spreading false information to create confusion among students and disturb the campus environment.
15: आपकी जानकारी में क्या है?
16: मैडम हमारी जानकारी में नहीं था कुछ भी ऐसा इशू. हाँ बाकी ये कह रहे हैं तो इन्होंने लॉज किया, अब इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी.
0: पुलिस हैव रिस्टोर्ड ट्रैफिक बट द कैंपस रिमेन्स टेंस. द स्टूडेंट्स हैव नाउ बीन अश्योर्ड ऑफ एन एसआईटी प्रोब. विद कमलजीत सिंह सांधू इन पंजाब्स फगवारा, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टुडे.
17: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे.

0: If at all the Election Commission has to regain a modicum of that credibility, Mr. Gyanesh Kumar Gupta should immediately step down. 13 crore voters have been disenfranchised. Who are these voters? If they are duplicate voters, where are they currently registered? If they are ghost voters, how did they get into the electoral roll in the first place? These are fundamental questions for which no answers are coming from the Election Commission. The whole process is completely opaque.
1: मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने प्रेस नोट के माध्यम से अपनी बातों को रखा है. ये अलग बात है प्रेस को भाजपा ने संबोधन किया है, और ये मैं कह सकता हूँ कि जो 10 महीनों में 14 उन्होंने अपना डिसेंट नोट जो दिया था, तो वो बताएं ना कि वो सही था ये सही था. अगर उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए तो फिर आपत्ति किन बातों पर थी. तो ये बड़ा विरोधाभास सा लगता है, और ऐसा लगता है कि जिस प्रकार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार ने चुनाव आयोग को पूरा अपहरण करके रखा है, और कल इन्होंने दबाव में इस प्रकार के वक्तव्य प्रेस नोट उन्होंने दिए हैं.

0: इसलिए कर रहे हैं, उनके माता जी का जो वो 83 में भारत की नागरिकता ली और 80 में फॉर्जरी करके वोट दिया और कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया उनके पिटीशन को, इसको डाइवर्ट करने के लिए ये चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं।
1: हम लोग सब लोग चाहते इस्तीफा होनी चाहिए उनकी और गिरफ्तारी होनी चाहिए, बल्कि ये तो अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो हमने इस पहले भी इस बात को जो है कहा था, राज बिहार भर के हर जिलों में राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन ये अभी बस शुरुआत है। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो लंबी लड़ाई होगी, अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे।

वो गुप्त मिशन सार्वजनिक हो गया, सबके सामने आ गया। उन्होंने उनको लगा कि वो गुप्त मिशन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। वो मोदी जी पूछते ना एक्स्ट्रा 2AB, चुनाव आयोग में एक्स्ट्रा 2AB, संधू जी और जोशी जी आ गए। अब वो एक्स्ट्रा 2AB ने गेम बिगाड़ दिया, सब कुछ सामने आ गया कि कैसे लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है।

देश भर में एसआईआर के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हमारे ज्ञानेश गुप्ता, अब वो गुप्ता जी का एक गुप्त मिशन चल रहा है, वो गुप्त मिशन अब गुप्त नहीं रहा,

0: the chief election commissioner should resign immediately. There are a number of political parties which have demanded the same thing. It's now clear that the chief election commissioner is acting as though he is the sole election commission. He is speaking for the election commission when the record shows that the two fellow election commissioners have disagreed.
1: राहुल गांधी को हर चीज में आपत्ति है, इलेक्शन कमीशन से आपत्ति है, ईवीएम से आपत्ति है, वोटर से आपत्ति है, नरेंद्र मोदी जी से आपत्ति है, एसआईआर से आपत्ति है। मुझे बताइए कि साफ स्वच्छ राजनीति जो आप चाहते हो, साफ स्वच्छ प्रजातंत्र चाहते हो, तो इलेक्टोरल रोल्स को क्लीन अप करने की आवश्यकता है या नहीं? जो बोगस वोटर्स हैं, जो लोग बाहर से आए हैं और वहाँ बैठे हैं वोट कर रहे हैं, उनको निकालने की आवश्यकता है या नहीं? घुसपैठ हैं या नहीं? ये सभी सवालों के ऊपर वो आत्मचिंतन करें तो उनको ये सभी सवालों का जवाब मिलेगा। एसआईआर सिर्फ अपने काम कर रहे हैं।

देश भर में एसआईआर के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हमारे ज्ञानेश गुप्ता, अब वो गुप्ता जी का एक गुप्त मिशन चल रहा है, वो गुप्त मिशन अब गुप्त नहीं रहा, अब वो गुप्त मिशन सार्वजनिक हो गया, सबके सामने आ गया। उन्होंने, उनको लगा कि वो गुप्त मिशन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, वो मोदी जी पूछते ना एक्स्ट्रा 2AB, चुनाव आयोग में एक्स्ट्रा 2AB, संधु जी और जोशी जी आ गए, अब वो एक्स्ट्रा 2AB ने गेम बिगाड़ दिया। सब कुछ सामने आ गया कि कैसे लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है।

0: ये इसलिए कर रहे हैं उनके माता जी का, जो वो 83 में भारत की नागरिकता ली और 80 में फोर्जरी करके वोट दिया और कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया उनके पिटीशन को, इसको डाइवर्ट करने के लिए ये चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं।
1: हम लोग सब लोग चाहते इस्तीफा होनी चाहिए उनकी और गिरफ्तारी होनी चाहिए, बल्कि ये तो अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो हमने इस पहले भी इस बात को जो है

कहा था। राज बिहार भर के हर जिलों में राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन ये अभी बस शुरुआत है। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो लंबी लड़ाई होगी। अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे।

0: લડાઈ લડીશું. તમે કયો સીપીસીબી ની અંદર લડાઈ લડ્યું છે, લેખિતમાં કોઈ કાગળ કરતા નથી. અને બીજા જે લોકો લડે છે તો ચામડીના રોગ અહીં ઘણા બધા લોકોને થયા છે. આગળની વાત જે અધૂરી રહી.
1: Under a makeshift tent in Bhetawada village of Gujarat, people from five villages take turns to sit and protest. It's been more than a month and they refuse to budge because it's been more than a decade that they have suffered from industrial pollution of their basic right to water. Roughly 40 to 45 minutes drive away from the Gujarat capital of Ahmedabad, these villagers from Dholka district now want an answer, a promise, a resolution that would be honored and followed up. So that's there, an end to skin, stomach and upper respiratory tract infections. These infections have turned fatal in the past few years, with cancer claiming more than 50 lives in these five villages.
2: केमिकल युक्त पानी से ही हमें सबको कैंसर हुआ है, कहें कि हमको कुछ व्यसन ही नहीं.
3: पिता को एक ऑपरेशन का 4 लाख का खर्चा हुआ है.
4: उनको कैंसर हुआ था, 4 साल हो गए.
5: हमने हमारा घर का सदस्य गुमाए हैं.
6: मेरे पति को कैंसर हुआ था.
7: पापा जी है, उसको भी चमड़ी का रोग हुआ है.
1: After years of waiting for some real answers or action and accountability, they are done with killer contaminated water. Not far from the protest site in Bhetawada village, a drain carrying what villagers describe as chemical-laden and contaminated water passes near a government school. Residents claim that contaminated water frequently appears in the school's borewell. Parents fear sending their children to school.
8: ये हमारा जो केमिकल युक्त पानी आ रहा है, वो धोलका के गटर लाइन का पानी आ रहा है. उसके अंदर बीच में जो कॉन्कर कंपनी है, कैडिला कंपनी है, जिमाटेक्स कंपनी है, वो अपना गंदा पानी, केमिकल युक्त पानी बिना ट्रीटमेंट किए हुए वो अंदर छोड़ दे रहे. वो पानी हमारे गांव में आ रहा है. स्कूल है पास में, वो ये जो कैनाल है वो स्कूल्स के पास के जा रहे हैं. तो जो स्कूल का बोरवेल है उसके अंदर भी ये केमिकल युक्त पानी आ रहा है. उसके कारण अभी जो वाली है, जो बच्चे के माता पिता, वो अभी मना कर रहे हैं कि स्कूल अभी बच्चे को स्कूल में भेजना नहीं है.
1: This water, allegedly laden with industrial effluent, has caused severe damage to Bhetawada, Tarsad, Nesda, Paldi and Umbreli of Dholka district. In Bhetawada alone, there have been cases of 21 cancer deaths in 7 years. Villagers allege the contaminated water as the primary reason.
8: जो केमिकल युक्त पानी आ रहा है, वो धोलका के गटर लाइन का पानी आ रहा है. उसके अंदर बीच में जो कॉन्कर कंपनी है, वो अपना गंदा पानी, केमिकल युक्त पानी बिना ट्रीटमेंट किए हुए वो अंदर छोड़ दे रहे. इसके कारण हमारे गांव के अंदर बहुत सारे कैंसर के दर्दी है. हाल में 21 लोग की तो मौत हो गई है अभी थोड़े ही साल में. प्लस चामड़े के रोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं हमारे गांव में केस.
9: कॉन्कर कंपनी का जो केमिकल वाला पानी खुले हम छोड़ते हैं, उसका भी वीडियो भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ. कैमरे में देखो आप. वो खुले हम पानी ऐसे ही छोड़ते हैं. अभी कुछ आश्वासन नहीं दिया है. हमारा धरना का 5 दिन था. 5 दिन हुआ तो जिला कलेक्टर साहब हमको यहाँ मिलने के लिए आए थे, लेकिन उसने भी हमारी बात सुनी और बोला कि मैं आपको 1-2 दिन में जवाब दूंगा. लेकिन अभी तक उनका भी कोई जवाब नहीं आया, कोई आश्वासन भी हमको नहीं मिला है.
10: आज पानी आवी रही छे केमिकल वालों, पानी बंद करवा.
1: 14-year-old अक्षय नवगन भाई is a student of 9th standard. On a weekday, he should be in school attending his classes. But his circumstances have driven him to sit at the protest site with others. Clutching to medical files of his grandmother, father and uncle. They have all been diagnosed with cancer.
11: ઘરમાં કોને કોને કેન્સર હતું તમારા?
12: મારા બાને, મારા કાકાને, મારા પપ્પાને.
11: અચ્છા, કેટલા ભાઈ બહેન છો તમે?
12: હું મારી બે બોનું છે અને હું એક ભાઈ.
1: અક્ષય બ્રેક્સ ડાઉન મિડ કન્વર્સેશન. કેન્સર ક્લેમ્ડ હિઝ ફાધર એન્ડ ગ્રેન્ડમધર.
12: ઓલું નહીં થયું મહિના હમણાં અડક જ જયા.
11: તમારા બા ને ક્યારે કેન્સર થયું હતું? ક્યારે એક્સપાયર થયા?
12: એમને તો ઘણું જ.
11: ઘરમાં બીજા કોને કોને કેન્સર છે?
12: એ મારા કાકાને થયું હતું, એમને કરાવડાયું ઓપરેશન.
11: કેટલો સમય ઈલાજ તમારા પપ્પાનો ચાલ્યો હતો?
12: ઘણો એ સમય ચાલ્યો હતો.
11: કેટલા દિવસ સુધી હોસ્પિટલમાં દવા કરાવી રહ્યા હતા?
12: ઘણો એ.
11: અચ્છા, કોઈ પ્રકારની સરકાર તરફથી કોઈ મદદ મળી હતી?
12: કશી ને.
11: પપ્પા જયારે એક્સપાયર થયા પછી પણ કોઈ સરકાર તરફથી કોઈ મળવા આવ્યું યા ધારાસભ્ય કોઈ મળવા આવ્યા?
12: કોઈ ને.
11: અત્યારે મમ્મી શું કરે છે? ઘરનું ગુજરાન કેવી રીતે ચાલે છે?
12: મમ્મી કઈ ને ગાયનું કરાવ.
11: પપ્પા શું કરતા?
12: ખેતરનું.
11: કેટલો સમય કેન્સર થયું ખબર પડી અને કેટલા સમય સુધી ઈલાજ કરાવ્યો તો તમે લોકોએ?
12: અમે એવું થયું ને તરત જ તે કરાવવાનું શરૂ કરી દીધું.
11: કેટલા દિવસ સુધી ઈલાજ ચાલ્યો તો?
12: એક દાડા.
1: His mother used to be a homemaker, but the battle against cancer has changed their lives forever. Another villager from Akshay's village, Petawada, 32-year-old Harshad Makwana is battling esophageal cancer.
2: ખાને મે તકલીફ હો રહી થી ઇસકે લિયે હમને ઇલાજ ધોલ અમદાવાદ મે કરવા કિસી કી મદદ નહીં મિલી ઓર એક સારા ખર્ચ હમરે કોઈ 8-10 લાખ કા ઉઠાના પડા કે યે કેમિકલ યુક્ત પાણી સે હી હમે સબકો કેન્સર હુઆ હૈ કહે કે હમકો કુછ વૈસા નહીં નહીં હૈ હમરે ઘર મે તીન લોગ કો હુઆ થા વો સભી લોગ સભી લોગ કો પેટ કા હી હોતા હૈ તો મે બોલના ચાહતા હુ કે પાણી સે હી હોતા હૈ ને કે પાણી કે દૂસરે તો કુછ વો સબકો ભી વૈસા નહીં થા.
1: Harshad had already lost his elder brother and mother to cancer. He said around 15 lakh was spent on his brother's treatment shortly before his death. They believe the water laden with industrial discharge from the nearby factories is the reason for the cancer. It's the same story in a different house, recounting the fight repeatedly from all angles. Naresh Bhai's 51-year-old father, Bhagwan Makwana, developed oral cancer 6 months ago. He had no history of substance abuse.
3: मेरे पापा को तो अभी 6 महीने हो गए, इलाज हो गया है. अभी तो भी दवाइयाँ चल रही है. 15 दिन एक मंथ में चेकअप करवाने जाता है. 15,000 से 20,000 खर्चा होता है. पिता को एक ऑपरेशन का 4 लाख का खर्चा हुआ है.
1: 2 months later, Naresh Bhai's mother, Vilas Makwana, was diagnosed with cancerous tumor in her stomach.
3: मेरी माता को भी कैंसर 2 महीने अभी होने वाले है. उनको अंदर पेट में गांठ का ऑपरेशन किया था. वो कैंसर के गांठ का ऑपरेशन किया था. खर्चा किसी ने दिया नहीं है. कोई संस्था में नहीं दिया, संस्था ने दिया नहीं है. गहने बेच दिए और जो हमारी जमीन थी वो किसी को पहाड़े को बेच के हमने वो इलाज करवाया. अभी ये पानी गांव में आ रहा है ना, वो बोले तो केमिकल युक्त आ रहा है. वो पानी पीने लायक नहीं है, कोई चीज बनाने के लायक नहीं है. इनकी वजह से जो पानी के अंदर जो आने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे शरीर में आते नहीं है. दूसरे बैक्टीरिया आते हैं, इनसे इनकी वजह से शरीर को खराब करता है और कैंसर की बीमारी होती है.
1: नरेश भाई's grandfather had also suffered from laryngeal cancer and died of the disease 8 years ago. Much like Naresh Bhai, Ravindra Lalji Bhai's father developed throat cancer 4 years ago.
4: मेरा पापा का नाम लालजी भाई है. उनको कैंसर हुआ था. 4 साल हो गए. खर्चा तो 3-3.5 लाख रुपया हुआ था. अभी तो आरओ के पानी पीते हैं तब से.
1: The water purifier installed specifically for the villagers near the village borewell cost them 5 to 10 rupees to collect water. Kajal's father Manubhai did not survive to enjoy this facility. She lost her father in the battle against throat cancer in 2022.
5: मेरे दादाजी को कैंसर कैंसर की बीमारी थी वो लगभग 5 सालों से थी वहाँ हम कितना भी खर्चा किया पर वो बच नहीं पाए क्योंकि हमने हमारा घर का सदस्य गुमाए हैं तो हम उनकी पीड़ा जानते हैं हमारे घर में वो ऑक्सीजन के बाटले खुद हमने रखे थे वहाँ बाटले रखने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाए
1: द ट्रीटमेंट वॉज कॉस्टली फॉर अ फैमिली दैट डिपेंडेड ऑन फार्मिंग
5: हमें पानी से ही हुआ था कैंसर हम आरो का पानी लाते थे वह पानी भी हम पैसे देकर लाते थे लेकिन हम वापरते हैं तो उला पानी पर वो पानी अच्छा नहीं आता फिर भी हम मेरे दादाजी का खर्चा 8 लाख से ज्यादा हुआ है लेकिन फिर भी हम बचा नहीं सके
1: 35-year-old Gautam Makwana of Phetwada died of cancer in June 2022, leaving behind his wife and 2 children.
13: मेरे पति को कैंसर हुआ था एक बार हमने ऑपरेशन करवाया मगर कुछ फिर नहीं पड़ा फिर हमने गहने बेचकर पहला ऑपरेशन कराया फिर भी दूसरी बार ऑपरेशन कराना पड़ा तो हमने हमारा खेत बेचा तीन साल हमने उनके कैंसर की होली कराई 2022 में उनकी मृत्यु हो गई
1: They did everything that they could to save their loved ones.
14: जे भी प्रयत्न कर जो बेन
1: These villagers are still trying their level best to fight this colossal battle against all odds. At the protest site, there are villagers with visible skin infections triggered by toxic reactions.
15: बेटावाड़ा में ज्यादातर पेशेंट स्किन के जो होते हैं उसमें दादर या फिर जो खुजली या एक दूसरे के टच में आने से फैलते हैं या फिर जो किसी एलर्जेंट के कांटेक्ट में आने से फैलते हैं जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस उसके भी पेशेंट मुझे देखने को मिलते हैं मुख्य वजह तो केमिकल युक्त पानी या फिर पेस्टिसाइड उसके कांटेक्ट में आने से भी मतलब हो सकता है एलर्जी
16: किसी किसी को तो सालों लग जाते हैं 2 साल जैसा जैसे ट्रीटमेंट होती है कि कुछ हफ्ते है डॉक्टर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो 6 महीने का कोर्स 12 महीने का कोर्स ऐसा आता है और इसमें तो 10,000-15,000 जैसी जैसी सैलरी हो वैसे करते हैं
7: हमें भी इस चामड़ी का रोग है वो वहाँ मेरे पापा जी है उसको भी चामड़ी का रोग हुआ है माथे का बाल गिरने का भी समस्या ज्यादा है उसका खर्च मेन मुझे ये एक जगह से नहीं हुआ है सारे शरीर में हुआ है तो कितनी बार मैं हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर कहा तुम्हें बहुत ज्यादा खर्च होगा
1: Hundreds of residents of all 5 villages have accused factories operating near their homes of releasing chemical-laden water into drains, which they say eventually contaminates groundwater and village borewells. For 15 years, they have made repeated appeals to the Panchayat, Municipality, Gujarat Pollution Control Board, Local MLA, District Administration, but all have failed to resolve the issue.
17: उसका उपाय एक ही है कि केमिकल फैक्ट्रियों का अभी गई काल जो अगले दिन यहाँ पे नोटिस दिया है सब 5-5 फैक्ट्री को कि आपका एक भी बूंद पानी अगर बाहर केमिकल वाला आएगा तो आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी स्ट्रिक्टली बोला है मैंने कि साहब ये बंद कर दो बहिर बात हो जाएगी पानी बंद होने के बाद यहाँ मेडिकल टीम जाएगी सबको कैसी तरह से पानी पीना है ना आरओ का प्लान आरओ वहाँ गाँव में आरओ का पानी भी मिल रहा है गर्म पानी भी मिल रहा है सभी व्यवस्था तो है ही लेकिन अगर जो भी आगे ज्यादा किसी को तकलीफ ना हो कोई शारीरिक वो पूरा पक्का ख्याल रखा जाएगा सबकी जिम्मेदारी हमारी है और हम ही काम करेंगे यहाँ से मेडिकल टीम भी जाएगी वो जो सूचन करे ऐसी मेरी गाँव वाले को विनती है कि आप भी जो डॉक्टर की सलाह दे उस तरह से काम करो तो केमिकल युक्त पानी 100% बंद कर रहे हैं मैं गाँव वाले के साथ हूँ
1: They also alleged that 5 factories continue to operate in the area. India Today reached out to few of them.
18: The 4 villages of the Dholka Taluka of Ahmedabad are facing the severe issues
19: due to the polluted or the contaminated water from more than 15 years. As per the villagers, they are claiming that they are getting the contaminated water due to the STP plant of the Dholka municipality, and as well as the polluted water from the nearby industrial companies which are sending the water without treatment. They are not treating the water, the chemical water, and due to which their borewells or their drinking sources have been contaminated, and they are facing this issue from more than 15 years. They are not getting any kind of relief or the help from these industrial companies. So that's why they are agitating from more than a month, and they are reaching to the collector of Ahmedabad. They are claiming that there must be some kind of actions taken against these companies or the persons who are involved in this kind of activity, and that's why they are agitating from more than a month, and that's why government has taken such kind of actions. They have, as per the minister, the CM has approved more than 150 crore for the expansion of the sewer treatment plant of the Dholka municipality. And furthermore, they are going to put the CCTV cameras across this industrial area. So they cannot send any kind of the water without a treatment or any other chemicals in the nearby areas. Though villagers are agitating for the movement, they are not relieved with this statement. They are still agitating for furthermore, and they want strict actions from the government.
1: Protesting villagers claim municipal wastewater and factory effluents are discharged into the same drain. The villagers said the discharge of chemical-laden water has stopped since the protest began, but claimed that such water was being released into the drains until around 15 days ago. They also alleged that factories sometimes release the water under the cover of darkness. The protesters said a GPCB team has collected water samples, but the reports have repeatedly shown nil contamination. They also said the district collector visited the area after learning about the protest, but claimed that no concrete response followed.
9: कितनी भी बार आगे रजूआत किया, आवेदन पत्र भी दिया मामलेदार को, प्रांत साहब को, हमारा यहाँ के स्थानिक धारा सभ्य केडीसी डाबी, उनको भी बात किया, लेकिन हर बार वो वही बोलते हैं कि हम बंद कर देंगे, आश्वासन देते हैं, लेकिन अभी तक कुछ बंद नहीं हुआ, और बाद में गांव लोग वाले सब मजबूर हो गए है, तो अभी उसको धरना पे बैठना पड़ रहा है।
20: बी ए वास्मो है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, वो कैंसर सोसाइटी वाले, वो उसका निदान करने के बाद मालूम पड़ेगा। पीने का पानी गाँव में से मिल रहा है, और पीने पानी का बैक्टेरियोलॉजिकल जो टेस्ट करना है वो हम कर रहे हैं, और शुद्ध पानी मिले, जो क्लोरीन की टेबलेट है वो भी हम दे रहे हैं, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है पीने के पानी में अभी तो।
1: After sitting and waiting for someone in the administration to look up and respond, the state environment minister has promised to look into the issue and resolve it.
21: धोलका के चार विलेजों का जो पोल्यूशन और स्वेच पानी की वजह से वहाँ डिसीज वगैरह हो रहे हैं, ये कंप्लेन थी। इसके लिए मैंने एक यहाँ वहाँ के लोकल एमएलए किरीट सिंह डाबी, ये सभी गांवों के सरपंच और उनके लीडर्स, गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और गुजरात अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर थे उनके साथ मैंने मीटिंग रखी थी, और ये कंप्लेन के बारे में डिटेल में चर्चा की गई। तय किया गया कि जो भी वहाँ फैक्ट्री है वहाँ हम सीसीटीवी कैमरा भी लगाएंगे, उसकी जांच भी करेंगे, ग्राउंड वाटर की भी जांच करवाएंगे, और जो स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन है अगर कहीं पॉल्यूशन है तो उनके सामने लिया जाएगा। भूपेंद्र भाई पटेल साहब ने भी सूचना दी है कि जल्दी से वो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बनाया जाए।
1: द रोड टू जस्टिस इज नॉट अ स्ट्रेट वन, neither is it a smooth one. The serpentine character of this track requires consistent follow-up and determined persistence to make the system clean the contamination in life. These villagers of Dhokla district of Gujarat are sitting and waiting to make the system hear them, see them, and act for them.

0: इसलिए कर रहे हैं, उनके माता जी का जो वो 83 में भारत की नागरिकता ली और 80 में होर्जरी करके वोट दिया और कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया उनके पिटीशन को, इसको डाइवर्ट करने के लिए ये चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं।
1: हम लोग सब लोग चाहते इस्तीफा होनी चाहिए उनकी और गिरफ्तारी होनी चाहिए, बल्कि ये तो अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो हमने इस पहले भी इस बात को जो है कहा था, राज बिहार भर के हर जिलों में राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन ये अभी बस शुरुआत है। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो लंबी लड़ाई होगी, अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़े।

देश भर में एसआईआर के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हमारे ज्ञानेश गुप्ता, अब वो गुप्ता जी का एक गुप्त मिशन चल रहा है। वो गुप्त मिशन अब गुप्त नहीं रहा, अब वो गुप्त मिशन सार्वजनिक हो गया, सबके सामने आ गया। उन्होंने, उनको लगा कि वो गुप्त मिशन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। वो मोदी जी पूछते ना एक्स्ट्रा 2AB, चुनाव आयोग में एक्स्ट्रा 2AB, संधु जी और जोशी जी आ गए। अब वो एक्स्ट्रा 2AB ने गेम बिगाड़ दिया, सब कुछ सामने आ गया कि कैसे लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है।

0: the chief election commissioner should resign immediately. There are a number of political parties which have demanded the same thing. It's now clear that the chief election commissioner is acting as though he is the sole election commission. He is speaking for the election commission when the record shows that the two fellow election commissioners have disagreed.
1: राहुल गांधी को हर चीज में आपत्ति है, इलेक्शन कमीशन से आपत्ति है, ईवीएम से आपत्ति है, वोटर से आपत्ति है, नरेंद्र मोदी जी से आपत्ति है, एसआईआर से आपत्ति है। मुझे बताइए कि साफ स्वच्छ राजनीति जो अब चाहते हो, साफ स्वच्छ प्रजातंत्र चाहते हो, तो इलेक्टोरल रोल्स को क्लीन अप करने की आवश्यकता है या नहीं? जो बोगस वोटर्स हैं, जो लोग बाहर से आए हैं और वहाँ बैठे हैं वोट कर रहे हैं, उनको निकालने की आवश्यकता है या नहीं? घुसपैठ हैं या नहीं? ये सभी सवालों के ऊपर वो आत्मचिंतन करें तो उनको ये सभी सवालों का जवाब मिलेगा। एसआईआर सिर्फ अपने काम कर रहे हैं।

0: welcome to the latest edition of It's Gone Viral. In the next half an hour, we will be showing you some of the images and videos that have gone viral last week and created some buzz.
1: आज मैं बना हूँ लड़की ये देखने के लिए दिल्ली में रात को लड़कियाँ कितना सेफ है और एंड में जो मेरे साथ हुआ वो आपने सोचा भी नहीं होगा। शुरुआत करी लड़की की ड्रेस पहनकर और फिर मेकअप के लिए बैठ गया। मेकअप कराते कराते मुझे शर्म आने लगी और फिर डांट भी पड़ गई।
2: खोला
3: A late night scooter ride through Delhi became an unsettling experiment when a content creator disguised himself as a woman to experience the city after dark.
1: पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पे गया तो ये दोनों लगातार घूरे जा रहे थे जैसे कि मुझे खा जाएंगे। भैया भी शॉक हो गए जब उन्हें पता लगा मैं लड़की नहीं लड़का और ये देखो इनको साइकिल पर है लेकिन पूरा दम लगा अच्छे से घूरने के लिए और ये दोनों मुझे देखकर रुक गए और वेट करने लगे और फिर पीछा करके मेरे पास आने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक और आदमी मेरे पास आकर कुछ कुछ बोलने लगा।
3: He said the ride involved prolonged stairs, unwanted approaches and vehicles repeatedly getting in his way.
1: थोड़ी और आगे गया तो ये दो ऑटो वाले मेरे सामने जानबूझकर रोक रहे थे। एक ऑटो वाले ने तो मेरे दोस्तों को वीडियो बनाते हुए देखा इसलिए वो पीछे रुक गया। लेकिन ये दूसरा ऑटो वाला बार बार अपना ऑटो लेके मेरे पास आ रहा था।
4: चला गया घूर के।
1: कुछ देर बाद मेरा दो गाड़ियों ने भी पीछा। ये पहली गाड़ी और ये दूसरी गाड़ी ने भी काफी देर तक पीछा।
5: भाई ये बहुत स्कैरी हो गया है। मुझे लग रहा है कि बंद कर देना चाहिए इसको। पिछले दो घंटे में इतना डिस्गस्टिंग हो गया ना मेरे लिए। साइकिल वाला बाइक वाला ऑटो कार सबने पीछा करने की कोशिश करी है। भाई बिल्कुल सेफ नहीं है लड़कियों के लिए रात में अकेला निकलना। सच में लड़कियों की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है।
6: बबुआ के बुआ होई छेना के मिठाई। बबुआ के बुआ होई छेना के मिठाई।
3: A tea seller on a train went beyond serving chai when he spotted an exhausted mother struggling with her crying child after a medical trip to Gorakhpur. He first offered her tea before taking it upon himself to entertain the little one.
7: आज मैं दिखाऊंगा जापान का एक पब्लिक टॉयलेट कितना फ्यूचरिस्टिक है।
8: हाय टॉयलेट, प्लीज टर्न ऑन द सिंक।
3: Mumbai content creator Sarthak Sachdeva was left amazed by a Japanese public toilet packed with high-tech features.
7: ऑटोमेटिक खुल जाता है।
9: भाई मतलब सिर्फ आपके वॉइस कंट्रोल से यहाँ इतने सारे कमांड्स लिखे हैं जिससे कि आप बिना छुए पूरा टॉयलेट यूज कर सकते हो जिससे कि जर्म्स भी नहीं फैलते। हाई टॉयलेट।
3: From turning on the tap to unlocking the bathroom door with a QR code, the futuristic setup has left social media equally surprised.
7: यहाँ पे कमांड दे सकते हो। ऐसी चीज लाइफ में कभी नहीं देखी थी और सच में जापान फ्यूचर में जी रहा है।
3: Driver vlogger Rajesh Ravani showcased a truck that looks more like a customized home on wheels. The cabin features a sofa-like seat, a 180-degree rotating driver's chair and motorized blinds, giving his workplace a surprisingly luxurious makeover.
10: Let me introduce to you my 81-year-old grandmother. She is a businesswoman, an avid traveler still in the age of 81.
3: An 81-year-old grandmother from Gurgaon is showing no signs of slowing down.
10: Dadi, tell us about life recently. What have you been up to? Have you been traveling?
11: Yes, I have been to Alaska for my cruise. I have really enjoyed it.
10: At 81 years old?
11: Yeah.
3: From cruising to Alaska to running her own business and maintaining a packed social calendar, her active lifestyle has left her granddaughter completely amazed.
10: What would you say?
11: So that they should enjoy their life, they should work hard and eat good food. At the same time, they should look after themselves.
10: Cheers, Dadi.
11: Cheers.

0: इसलिए कर रहे हैं उनके माता जी का जो वो 83 में भारत की नागरिकता ली और 80 में होर्जरी करके वोट दिया और कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया उनके पिटीशन को इसको डाइवर्ट करने के लिए ये चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं।
1: हम लोग सब लोग चाहते इस्तीफा होनी चाहिए उनकी और गिरफ्तारी होनी चाहिए, बल्कि ये तो अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो हमने इस पहले भी इस बात को जो है कहा था, राज बिहार भर के हर जिलों में राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन ये अभी बस शुरुआत है। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो लंबी लड़ाई होगी, अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
3: You are watching India Today.
4: A massive political firestorm erupts in Delhi. In the eye of the storm is Delhi Minister Parvesh Varma, who was seen slapping a youth in the video. Varma was at the spot to inspect the road condition. When the incident took place, Varma was seen pushing down a man holding a phone and then slapping him. The victim, a youth named Sahib Singh, claims he confronted Varma over the deteriorating road surface and alleges the minister slapped him while he was recording the very interaction. Singh also alleges that Varma's associates threatened him while police personnel were present at the spot. Delhi PWD minister now has broken his silence, saying that he reacted as the youth abused his family and accused Jarnail Singh of seeking money from the contractors. But politics over the issue rages, with Aam Aadmi Party convener Kejriwal saying that Varma is a goon who resorted to violence when his corruption was exposed. Congress also accused the BJP leaders of arrogance, saying they think they're kings and warning that those who question them are beaten up.
5: हम यहाँ पर आए थे, इनकी पीडब्ल्यूडी के जवाब से फोन आया था मिनिस्टर जी का ही सर को, तो यहाँ पे देखने के लिए आए थे, उन्हें दिखाने आए थे ये रोड की क्या हालत है, उन्हें दिखाया कि हाथ कैसे रोड उखड़ रही है, सर ने दिखाया, तो उनसे वो चीज झेली नहीं गई, उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया, उनके जो साथी थे उन्होंने धमकी दी है मुझे जान से मारने की, 3 से 4 जब लोग थे उन्होंने मारा भी, हाथ भी उठाया, उसमें पुलिस भी यहाँ पर थी, उनके सामने ये सब हुआ है। वो लिखित रूप में माफी मांगे, उनपे जो बनती कार्रवाई है वो सस्पेंड करना बनता है, भाजपा इस पे एक्शन ले, अगर वो सच के साथ है तो एक्शन ले, क्योंकि इसपे तो वीडियोज आई है, हम कुछ अपनी तरफ से बोल नहीं रहे, सब की वीडियो है, एक्शन हो।
6: यहाँ के विधायक के कहने से हमारे इंजीनियर्स ने, हमारी टीम ने ये काम कर दिया, ये रोड में पूरा काम नहीं हुआ और ये हमारे टेंडर के अकॉर्डिंगली नहीं था, क्योंकि गुरु पूरब था इसलिए काम को किया गया। तो जर्नैल सिंह ने आके यहाँ पर वीडियो बनाया और ये रोड को उसने उखाड़ा, पहले उसने यहाँ पर अपना वीडियो बनाने से पहले कुछ अंदर डाल के ये रोड को पूरा लूज किया, फिर उसने अपने हाथ से ऐसे ऐसे करके ये रोड ऐसे निकल रहा है और ऐसे वो दिखाया, उससे पहले ये वो पूरा इसको लूज कर चुका था। मैं यहाँ से केवल 2 कदम की दूरी पर जहाँ पे उसने रोड को उखाड़ा था, मगर ये जो टेम्परेरी रोड बना उसके बाद भी ये रोड बहुत अच्छा बनाया इंजीनियर्स ने, ताकि ये अच्छा चल जाए। पीछे से 2-3 किलोमीटर से रोड बनता हुआ आ रहा है, बहुत ही शानदार ये रोड बना है। सारे विधायकों को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये अपनी परेशानी हो रही है कि रोड कैसे बन रहे, इतने अच्छे रोड कैसे बन रहे।
7: विकासपुरी रिंग रोड के ऊपर में पिछले कई दिनों से रोड बनाने का काम चल रहा है, वहाँ के विधायक जर्नैल सिंह द्वारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को कि हमको कॉन्ट्रैक्टर से मिलाइए और

0: are watching India Today.
1: A massive political firestorm erupts in Delhi. In the eye of the storm is Delhi Minister Parvesh Varma, who was seen slapping a youth in the video. Varma was at the spot to inspect the road condition. When the incident took place, Varma was seen pushing down a man holding a phone and then slapping him. The victim, a youth named Sahib Singh, claims he confronted Varma over the deteriorating road surface and alleges the minister slapped him while he was recording the very interaction. Singh also alleges that Varma's associates threatened him while police personnel were present at the spot. Delhi PWD minister now has broken his silence, saying that he reacted as the youth abused his family and accused Jarnail Singh of seeking money from the contractors. But politics over the issue rages, with Aam Aadmi Party convener Kejriwal saying that Varma is a goon who resorted to violence when his corruption was exposed. Congress also accused the BJP leaders of arrogance, saying they think they're kings and warning that those who question them are beaten up.
2: हम यहाँ पर आए थे इनकी पीडब्ल्यूडी के दबाव से फोन आया था मिनिस्टर जी का ही सर को तो यहाँ पे देखने के लिए आए थे दिखाने आए थे ये रोड की क्या हालत है उन्हें दिखाया कि हाथ कैसे रोड उखड़ रही है सर ने दिखाया तो उनसे वो चीज झेली नहीं गई उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया उनके जो साथी थे उन्होंने धमकी दी है मुझे जान से मारने की तीन से चार जब लोग थे उन्होंने मारा भी हाथ भी उठाया उसमें पुलिस भी यहाँ पर थी उनके सामने ये सब हुआ है वो लिखित रूप में माफी मांगे और उनपे जो बनती कार्रवाई है वो सस्पेंड करना बनता है भाजपा इस पे एक्शन ले अगर वो सच के साथ है तो एक्शन ले क्योंकि इसपे तो वीडियोज आई है हम कुछ अपनी तरफ से बोल नहीं रहे हैं सब ठीक ही वीडियो है एक्शन हो
3: यहाँ के विधायक के कहने से हमारे इंजीनियर्स ने हमारी टीम ने ये काम कर दिया ये रोड में पूरा काम नहीं हुआ और ये हमारे टेंडर के अकॉर्डिंगली नहीं था क्योंकि गुरु पूर्व था इसलिए काम को किया गया तो जर्नैल सिंह ने आके यहाँ पर वीडियो बनाया और ये रोड को उसने उखाड़ा पहले उसने यहाँ पर अपना वीडियो बनाने से पहले कुछ अंदर डाल के ये रोड को पूरा लूज किया फिर उसने अपने हाथ से ऐसे ऐसे करके ये रोड ऐसे निकल रहा है और ऐसे वो दिखाया उससे पहले ये वो पूरा इसको लूज कर चुका था मैं यहाँ से केवल दो कदम की दूरी पर जहाँ पे उसने रोड को उखाड़ा था मगर ये जो टेम्परेरी रोड बना उसके बाद भी ये रोड बहुत अच्छा बनाया इंजीनियर्स ने ताकि ये अच्छा चल जाए पीछे से दो तीन किलोमीटर से

0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: You are watching India Today.
2: A massive political firestorm erupts in Delhi. In the eye of the storm is Delhi Minister Parvesh Varma, who was seen slapping a youth in the video. Varma was at the spot to inspect the road condition when the incident took place. Varma was seen pushing down a man holding a phone and then slapping him. The victim, a youth named Sahib Singh, claims he confronted Varma over the deteriorating road surface and alleges the minister slapped him while he was recording the very interaction. Singh also alleges that Varma's associates threatened him while police personnel were present at the spot. Delhi PWD minister now has broken his silence, saying that he reacted as the youth abused his family and accused Jarnail Singh of seeking money from the contractors. But politics over the issue rages, with Aam Aadmi Party convener Kejriwal saying that Varma is a goon who resorted to violence when his corruption was exposed. Congress also accused the BJP leaders of arrogance, saying they think they're kings, and warning that those who question them are beaten up.
3: हम यहाँ पर आए थे इनकी पीडब्ल्यूडी के जवाब से फोन आया था मिनिस्टर जी का ही सर को तो यहाँ पे देखने के लिए आए थे दिखाने आए थे रोड की क्या हालत है उन्हें दिखाया कि हाथ कैसे रोड उखड़ रही है सर ने दिखाया तो उनसे वो चीज झेली नहीं गई उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया उनके जो साथी थे उन्होंने धमकी दी है मुझे जान से मारने की तीन से चार जब लोग थे उन्होंने मारा भी हाथ भी उठाया उसमें पुलिस भी यहाँ पर थी उनके सामने ये सब हुआ वो लिखित रूप में माफी मांगे और उनपे जो बनती कार्रवाई है वो सस्पेंड करना बनता है भाजपा इस पे एक्शन ले अगर वो सच के साथ है तो एक्शन ले क्योंकि इसपे तो वीडियोज आई है हम कुछ अपनी तरफ से बोल नहीं रहे सब की वीडियो है एक्शन हो
4: यहाँ के विधायक के कहने से हमारे इंजीनियर्स ने हमारी टीम ने ये काम कर दिया ये रोड में पूरा काम नहीं हुआ और ये हमारे टेंडर के अकॉर्डिंगली नहीं था क्योंकि गुरु पूर्व था इसलिए काम को किया गया तो जर्नैल सिंह ने आके यहाँ पर वीडियो बनाया और ये रोड को उसने उखाड़ा पहले उसने यहाँ पर अपना वीडियो बनाने से पहले कुछ अंदर डाल के ये रोड को पूरा लूज किया फिर उसने अपने हाथ से ऐसे ऐसे करके ये रोड ऐसे निकल रहा है और ऐसे वो दिखाया उससे पहले ये वो पूरा इसको लूज कर चुका था मैं यहाँ से केवल दो कदम की दूरी पर जहाँ पे उसने रोड को उखाड़ा था मगर ये जो टेम्परेरी रोड बना उसके बाद भी ये रोड बहुत अच्छा बनाया इंजीनियर्स ने ताकि ये अच्छा चल जाए पीछे से दो तीन किलोमीटर से रोड बनता हुआ आ रहा है बहुत ही शानदार ये रोड बना है सारे विधायकों को आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये अपनी परेशानी हो रही है कि रोड कैसे बन रहे इतने अच्छे रोड कैसे बन रहे
5: विकासपुरी रिंग रोड के ऊपर में पिछले कई दिनों से रोड बनाने का काम चल रहा है वहाँ के विधायक जर्नैल सिंह द्वारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को कि हमको कॉन्ट्रेक्टर से मिलाइए और उनसे कमीशन दिलवाइए ये वो काफी दिन से उनको बोल रहे थे आज जब मैं उस रास्ते से निकल रहा था तो मैंने इंजीनियर

0: political slugfest. And as the war of words escalates, legally, the battle is tightening. Gem Granite's owner Veeramani and co-accused Shanti and Mahindra Simman remain behind bars as their judicial custody has been extended until October 9. The Chennai POXO Special Court has received a police counter-affidavit strongly opposing bail for the two accused, Shanti and Simman. Investigators allege that Shanti received over 24 lakh rupees from Veeramani specifically to destroy crucial evidence. Police warn forensic examination of electronic devices are pending and unestablished victim identities mean releasing the accused would directly imperil witnesses and sabotage justice. Meanwhile, BJP is demanding a CBI probe into the alleged sex scandal, while TVK's ally CPIM has accused Vijay government of falsely taking credit for the case. With the investigation still underway, the case has become a major political flashpoint in Tamil Nadu. Bureau Report, India Today.
1: You are watching India Today.
0: A massive political firestorm erupts in Delhi. In the eye of the storm is Delhi Minister Parvesh Varma, who was seen slapping a youth in the video. Varma was at the spot to inspect the road condition when the incident took place. Varma was seen pushing down a man holding a phone and then slapping him. The victim, a youth named Sahib Singh, claims he confronted Varma over the deteriorating road surface and alleges the minister slapped him while he was recording the very interaction. Singh also alleges that Varma's associates threatened him while police personnel were present at the spot. Delhi PWD minister now has broken his silence, saying that he reacted as the youth abused his family and accused Jarnail Singh of seeking money from the contractors. But politics over the issue rages, with Aam Aadmi Party convener Kejriwal saying that Varma is a goon who resorted to violence when his corruption was exposed. Congress also accused the BJP leaders of arrogance, saying they think they're kings and warning that those who question them are beaten up.
2: हम यहाँ पर आए थे इनकी पीडब्ल्यूडी के जवाब से फोन आया था मिनिस्टर जी का ही सर को तो यहाँ पे देखने के लिए आए थे दिखाने आए थे कि रोड की क्या हालत है उन्हें दिखाया कि हाथ कैसे रोड उखड़ रही है सर ने दिखाया तो उनसे वो चीज भेजी नहीं गई उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया उनके जो साथी थे उन्होंने धमकी दी है मुझे जान से मारने की तीन से चार जब लोग थे उन्होंने मारा भी हाथ भी उठाया उसमें पुलिस भी यहाँ पर थी उनके सामने ये सब हुआ है वो लिखित रूप में माफी मांगे और उनपे जो बनती कार्रवाई है वो सस्पेंड करना बनता है भाजपा इस पे एक्शन ले अगर वो सच के साथ है तो एक्शन ले क्योंकि इसपे तो वीडियोस आई हैं हम कुछ अपनी तरफ से बोल नहीं रहे सब चीज की वीडियो है एक्शन हो
3: यहाँ के विधायक के कहने से हमारे इंजीनियर्स ने हमारी टीम ने ये काम कर दिया ये रोड में पूरा काम नहीं हुआ और ये हमारे टेंडर के अकॉर्डिंगली नहीं था क्योंकि गुरु पूर्व था इसलिए काम को किया गया तो जर्नैल सिंह ने आके यहाँ पर वीडियो बनाया और ये रोड को उसने उखाड़ा पहले उसने यहाँ पर अपना वीडियो बनाने से पहले कुछ अंदर डाल के ये रोड को पूरा लूज किया फिर उसने अपने हाथ से ऐसे ऐसे करके ये रोड ऐसे निकल रहा है और ऐसे वो दिखाया उससे पहले ये वो पूरा इसको लूज कर चुका था मैं यहाँ से केवल दो कदम की दूरी पर जहाँ पे उसने रोड को उखाड़ा था मगर ये जो टेम्परेरी रोड बना उसके बाद भी ये रोड बहुत अच्छा बनाया इंजीनियर्स ने ताकि ये अच्छा चल जाए पीछे से दो तीन किलोमीटर से रोड बनता हुआ आ रहा है बहुत ही शानदार ये रोड बना है सारे विधायकों को आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये अपनी परेशानी हो रही है कि रोड कैसे बन रहे इतने अच्छे रोड कैसे बन रहे
4: विकासपुरी रिंग रोड के ऊपर में पिछले कई दिनों से रोड बनाने का काम चल रहा है वहाँ के विधायक जर्नैल सिंह द्वारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को कि हमको कॉन्ट्रैक्टर से मिलाइए और उनसे कमीशन दिलवाइए ये वो काफी दिन से उनको बोल रहे थे आज जब मैं उस रास्ते से निकल रहा था तो मैंने इंजीनियर्स को बोला कि एक बार मैं सारे काम को देखना चाहता हूं जब मैं वहां पे रुका मैंने उनका 45 मिनट तक वेट किया हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया जब वहां पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया

0: The minister slapped him while he was recording the very interaction. Singh also alleges that Verma's associates threatened him while police personnel were present at the spot. Delhi PWD minister now has broken his silence, saying that he reacted as the youth abused his family and accused Jarnail Singh of seeking money from the contractors. But politics over the issue rages, with Aam Aadmi Party convener Kejriwal saying that Verma is a goon who resorted to violence when his corruption was exposed. Congress also accused the BJP leaders of arrogance, saying they think they're kings and warning that those who question them are beaten up.
1: हम यहाँ पर आए थे इनकी पीडब्ल्यूडी के जवाब से फोन आया था मिनिस्टर जी का ही सर को तो यहाँ पे देखने के लिए आए थे उन्हें दिखाने आए थे कि रोड की क्या हालत है उन्हें दिखाया कि हाथ कैसे रोड उखड़ रही है सर ने दिखाया तो उनसे वो चीज झेली नहीं गई उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया उनके जो साथी थे उन्होंने धमकी दी है मुझे जान से मारने की तीन से चार जब लोग थे उन्होंने मारा भी हाथ भी उठाया उसमें पुलिस भी यहाँ पर थी उनके सामने ये सब हुआ है वो लिखित रूप में माफी मांगे और उनपे जो बनती कार्रवाई है वो सस्पेंड करना बनता है भाजपा इस पे एक्शन ले अगर वो सच के साथ है तो एक्शन ले क्योंकि इस पे तो वीडियोस आई हैं हम कुछ अपनी तरफ से बोल नहीं रहे हैं सब ठीक ही वीडियो है एक्शन हो
2: यहाँ के विधायक के कहने से हमारे इंजीनियर्स ने हमारी टीम ने ये काम कर दिया ये रोड में पूरा काम नहीं हुआ और ये हमारे टेंडर के अकॉर्डिंगली नहीं था क्योंकि गुरु पूर्व था इसलिए काम को किया गया तो जर्नैल सिंह ने आके यहाँ पर वीडियो बनाया और ये रोड को उसने उखाड़ा पहले उसने यहाँ पर अपना वीडियो बनाने से पहले कुछ अंदर डाल के ये रोड को पूरा लूज किया फिर उसने अपने हाथ से ऐसे ऐसे करके ये रोड ऐसे निकल रहा है और ऐसे वो दिखाया उससे पहले ये वो पूरा इसको लूज कर चुका था मैं यहाँ से केवल दो कदम की दूरी पर जहाँ पे उसने रोड को उखाड़ा था मगर ये जो टेम्परेरी रोड बना उसके बाद भी ये रोड बहुत अच्छा बनाया इंजीनियर्स ने ताकि ये अच्छा चल जाए पीछे से दो तीन किलोमीटर से रोड बनता हुआ आ रहा है बहुत ही शानदार ये रोड बना है सारे विधायकों को आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये अपनी परेशानी हो रही है कि रोड कैसे बन रहे इतने अच्छे रोड कैसे बन रहे
3: विकासपुरी रिंग रोड के ऊपर में पिछले कई दिनों से रोड बनाने का काम चल रहा है वहाँ के विधायक जर्नैल सिंह द्वारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को कि हमको कॉन्ट्रेक्टर से मिलाइए और उनसे कमीशन दिलवाइए ये वो काफी दिन से उनको बोल रहे थे आज जब मैं उस रास्ते से निकल रहा था तो मैंने इंजीनियर्स को बोला कि एक बार मैं सारे काम को देखना चाहता हूं जब मैं वहां पे रुका मैंने उनका 45 मिनट तक वेट किया हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया जब वहां पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया
4: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद जाऊंगा
5: पीडब्ल्यूडी मंत्री जी का भ्रष्टाचार पकड़ा गया अब आ गया कैमरे तो बीजेपी वालों के भी ऑन थे पर जैसे ये सड़क उखाड़ कर दिखाई मंत्री जी के एकदम होश फाकता हो गए मंत्री जी आपा खो बैठे जिसका सबूत आप सबने देखा ऑन कैमरा और मंत्री जी के अंदर दम है तो इस सड़क की सीबीआई जांच करा दो सीबीआई जांच करा दो सब सामने आ जाएगा आप अपने इंजीनियर्स को और ऐसा घटिया काम करने वाले ठेकेदारों को शेल्टर क्यों कर रहे हैं डिफेंड क्यों कर रहे हैं आप कार्रवाई उनके ऊपर करें
6: देखिए प्रवेश शर्मा कहीं पे गए वहां पर सामने से आम आदमी पार्टी के लोगों ने कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी करी उनके परिवारजनों को गालियां निकाली तो उसको देखकर मुझे लगता है प्रवोक हो गए वो और संयम बरतना चाहिए गाली निकालने से पहले 10 बार आदमी को सोचना चाहिए खास करके परिवारजनों को गाली नहीं निकालनी चाहिए
7: निश्चित रूप से मंत्री को इस तरह से एक युवक अगर सड़क के भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी दे रहा है तो मंत्री को तो कार्रवाई करनी चाहिए उन बेईमानों के खिलाफ जिन्होंने सड़क में भ्रष्टाचार किए वहां के स्थानीय विधायक हैं जर्नैल सिंह जी उन्होंने यह मुद्दा प्रतिदिन से लगातार उठाया और ये बताया कि किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है सड़कें उखड़कर और उसको उखड़ के दिखा तो आप बजाय इसकी भी कार्रवाई करें गुंडागर्दी का जो आप मार रहे हैं नौजवान को ये कौन सी बात है
8: दिल्ली की सड़कें एक

0: But politics over the issue rages, with Aam Aadmi Party convener Kejriwal saying that Verma is a goon who resorted to violence when his corruption was exposed. Congress also accused the BJP leaders of arrogance, saying they think they're kings and warning that those who question them are beaten up.
1: हम यहाँ पर आए थे इनकी पीडब्ल्यूडी के जवाब से फोन आया था मिनिस्टर जी का ही सर को तो यहाँ पे देखने के लिए आए थे दिखाने आए थे ये रोड की क्या हालत है उन्हें दिखाया कि हाथ कैसे रोड उखड़ रही है सर ने दिखाया तो उनसे वो चीज झेली नहीं गई उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया उनके जो साथी थे उन्होंने धमकी दी है मुझे जान से मारने की तीन से चार जब लोग थे उन्होंने मारा भी हाथ ही उठाया उसमें पुलिस भी यहाँ पर थी उनके सामने ये सब हुआ है वो लिखित रूप में माफी मांगे और उनपे जो बनती कार्रवाई है वो सस्पेंड करना बनता है भाजपा इस पे एक्शन ले अगर वो सच के साथ है तो एक्शन ले क्योंकि इस पे तो वीडियोस आई हैं हम कुछ अपनी तरफ से बोल नहीं रहे हैं सब चीज की वीडियो है एक्शन हो
2: यहाँ के विधायक के कहने से हमारे इंजीनियर्स ने हमारी टीम ने ये काम कर दिया ये रोड में पूरा काम नहीं हुआ और ये हमारे टेंडर के अकॉर्डिंगली नहीं था क्योंकि गुरु पूर्व था इसलिए काम को किया गया तो जर्नैल सिंह ने आके यहाँ पर वीडियो बनाया और ये रोड को उसने उखाड़ा पहले उसने यहाँ पर अपना वीडियो बनाने से पहले कुछ अंदर डाल के ये रोड को पूरा लूज किया फिर उसने अपने हाथ से ऐसे ऐसे करके ये रोड ऐसे निकल रहा है और ऐसे वो दिखाया उससे पहले ये वो पूरा इसको लूज कर चुका था मैं यहाँ से केवल दो कदम की दूरी पर जहाँ पे उसने रोड को उखाड़ा था मगर ये जो टेम्परेरी रोड बना उसके बाद भी ये रोड बहुत अच्छा बनाया इंजीनियर्स ने ताकि ये अच्छा चल जाए पीछे से दो तीन किलोमीटर से रोड बनता हुआ आ रहा है बहुत ही शानदार ये रोड बना है सारे विधायकों को आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये अपनी परेशानी हो रही है कि रोड कैसे बन रहे इतने अच्छे रोड कैसे बन रहे
3: विकासपुरी रिंग रोड के ऊपर में पिछले कई दिनों से रोड बनाने का काम चल रहा है वहां के विधायक जर्नैल सिंह द्वारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को कि हमको कॉन्ट्रैक्टर से मिलाइए और उनसे कमीशन दिलवाइए ये वो काफी दिन से उनको बोल रहे थे आज जब मैं उस रास्ते से निकल रहा था तो मैंने इंजीनियर्स को बोला कि एक बार मैं सारे काम को देखना चाहता हूं जब मैं वहां पे रुका मैंने उनका 45 मिनट तक वेट किया हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया जब वहां पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया
4: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद जाऊंगा
5: पीडब्ल्यूडी मंत्री जी का भ्रष्टाचार पकड़ा गया अब आ गया कैमरे तो बीजेपी वालों के भी ऑन थे पर जैसे ये सड़क उखाड़ कर दिखाई मंत्री जी के एकदम होश फाकता हो गए मंत्री जी आपा खो बैठे जिसका सबूत आप सबने देखा ऑन कैमरा और मंत्री जी के अंदर दम है तो इस सड़क की सीबीआई जांच करा दो सीबीआई जांच करा दो सब सामने आ जाएगा आप अपने इंजीनियर्स को और ऐसा घटिया काम करने वाले ठेकेदारों को शेल्टर क्यों कर रहे हैं डिफेंड क्यों कर रहे हैं आप कार्रवाई उनके ऊपर करें
6: देखिए प्रवेश शर्मा कहीं पे गए वहां पर सामने से आम आदमी पार्टी के लोगों ने कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी करी उनके परिवारजनों को गालियां निकाली तो उसको देखकर मुझे लगता है प्रवोक हो गए वो और संयम बरतना चाहिए गाली निकालने से पहले 10 बार आदमी को सोचना चाहिए खास करके परिवारजनों को गाली नहीं निकालनी चाहिए
7: निश्चित रूप से मंत्री को इस तरह से एक युवक अगर सड़क के भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी दे रहा है तो मंत्री को तो कार्रवाई करनी चाहिए उन बेईमानों के खिलाफ जिन्होंने सड़क में भ्रष्टाचार किए वहां के स्थानीय विधायक हैं जर्नैल सिंह जी उन्होंने यह मुद्दा किसी दिन से लगातार उठाया और ये बताया कि इस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है सड़क उखड़कर और उसको उखाड़ के दिखा तो आप बजाय इसके भी कार्रवाई करें गुंडागर्दी का आचरण दिखाया आप मार रहे नौजवान ये कौन सी बात है
8: दिल्ली की सड़कें एकदम ऊपर से ही काम हो रहा है और तुरंत उखड़ जा रही हैं तो प्रवेश वर्मा जी को लगा होगा कि इस भ्रष्टाचार का उजागर हो रहा है इसलिए तैस में आके मार दिया जवाब देना चाहिए इस तरह से नहीं मारना चाहिए

0: Form 6 amendment is illegal in the absence of amending the 1960 rules. Number one. Number two, through that illegally amended Form 6, you conducted an SIR in Bengal and Bihar. The deletions made through that illegal Form 6, through that SIR, are illegal. And if the deletions are illegal in West Bengal and Bihar, the mandate is unconstitutional. This is the fundamental issue which we were waiting, we were expecting that they will talk about, they will address. This has not been addressed. Objection to yahi thi. This was the objection of Sandhu and Joshi.
1: The press note after the meeting of the entire election commission clearly states that all the development about SIR in various parts of the country was found to be valid and legally permissible by the Supreme Court of India. Supreme Court ne pure SIR ki prakriya ko challenge karte hue kaun log gaye the? Congress party gayi thi, Communist party gayi thi, CPM gayi thi aur TMC to darjano case kiya tha unhone. To sabko sunne ke baad Supreme Court ne SIR ko okay kaha.
2: Are watching India Today.
3: A massive political firestorm erupts in Delhi. In the eye of the storm is Delhi Minister Parvesh Varma, who was seen slapping a youth in the video. Varma was at the spot to inspect the road condition when the incident took place. Varma was seen pushing down a man holding a phone and then slapping him. The victim, a youth named Sahib Singh, claims he confronted Varma over the deteriorating road surface and alleges the minister slapped him while he was recording the very interaction. Singh also alleges that Varma's associates threatened him while police personnel were present at the spot. Delhi PWD minister now has broken his silence, saying that he reacted as the youth abused his family and accused Jarnail Singh of seeking money from the contractors. But politics over the issue rages, with Aam Aadmi Party convener Kejriwal saying that Varma is a goon who resorted to violence when his corruption was exposed. Congress also accused the BJP leaders of arrogance, saying they think they're kings and warning that those who question them are beaten up.
4: हम यहाँ पर आए थे इनकी पीडब्ल्यूडी के दबाव से फोन आया था मिनिस्टर जी का ही सर को तो यहाँ पे देखने के लिए आए थे उन्हें दिखाने आए थे कि रोड की क्या हालत है उन्हें दिखाया कि हाथ कैसे रोड उखड़ रही है सर ने दिखाया तो उनसे वो चीज झेल नहीं गई उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया उनके जो साथी थे उन्होंने धमकी दी है मुझे जान से मारने की तीन से चार जब लोग थे उन्होंने मारा भी हाथ भी उठाया उसमें पुलिस भी यहाँ पर थी उनके सामने ये सब हुआ वो लिखित रूप में माफी मांगे और उनपे जो बनती कार्रवाई है वो सस्पेंड करना बनता है भाजपा इस पे एक्शन ले अगर वो सच के साथ है तो एक्शन ले क्योंकि इस पे तो वीडियोज आई है हम कुछ अपनी तरफ से बोल नहीं रहे हैं सब ठीक ही वीडियो है
5: यहाँ के विधायक के कहने से हमारे इंजीनियर्स ने हमारी टीम ने ये काम कर दिया ये रोड में पूरा काम नहीं हुआ और ये हमारे टेंडर के अकॉर्डिंगली नहीं था क्योंकि गुरु पूर्व था इसलिए काम को किया गया तो जर्नैल सिंह ने आके यहाँ पर वीडियो बनाया और ये रोड को उसने उखाड़ा पहले उसने यहाँ पर अपना वीडियो बनाने से पहले कुछ अंदर डाल के ये रोड को पूरा लूज किया फिर उसने अपने हाथ से ऐसे ऐसे करके ये रोड ऐसे निकल रहा है और ऐसे वो दिखाया उससे पहले ये वो पूरा इसको लूज कर चुका था मैं यहाँ से केवल दो कदम की दूरी पर जहाँ पे उसने रोड को उखाड़ा था मगर ये जो टेम्परेरी रोड बना उसके बाद भी ये रोड बहुत अच्छा बनाया इंजीनियर्स ने ताकि ये अच्छा चल जाए पीछे से दो तीन किलोमीटर से रोड बनता हुआ आ रहा है बहुत ही शानदार ये रोड बना है सारे विधायकों को आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये अपनी परेशानी हो रही है कि रोड कैसे बन रहे इतने अच्छे रोड कैसे बन रहे
6: विकासपुरी रिंग रोड के ऊपर में पिछले कई दिनों से रोड बनाने का काम चल रहा है वहाँ के विधायक जर्नैल सिंह द्वारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को कि हमको कॉन्ट्रेक्टर से मिलाइए और उनसे कमीशन दिलवाइए ये वो काफी दिन से उनको बोल रहे थे आज जब मैं उस रास्ते से निकल रहा था तो मैंने इंजीनियर्स को बोला कि एक बार मैं सारे काम को देखना चाहता हूं जब मैं वहां पे रुका मैंने उनका 45 मिनट तक वेट किया हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया जब वहां पे जर्नल